थोड़ी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यूने यादों के बारे में हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय।

प्रार्थना अभवत। इस हफ्ते में हम एक गाने का आधार लेकर संस्कृत सीख रहे हैं। आज हम गाने का दूसरा पद गाएंगे। गाना देशभक्ति से ओतप्रोत है। गाना सुनते सुनते आप गाने लगेंगे और संस्कृत सुनते सुनते संस्कृत बोलने लगेंगे। आगच्छन्तु संस्कृतम् श्रुण्मः संस्कृतम् वदामः। अद्य सहायिका रूपेण मया सह मम सखी मञ्जरी भगिनी अस्ति। गीतस्य द्वितीयं पदं गायामः।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करते. केली वेणू धोनी 90.4 FM वरती तुम्ही ट्यून इन आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: सहानुभूती का महत्व. जब कभी इंसान पर बुरा वक्त आ जाता है या फिर मनुष्य विपदा या घोर संकट में फंस जाता है या किसी असाध्य रोग का शिकार हो जाता है तो उसका मन सहसा टूटने लगता है. ऐसे समय पर उसे चाहिए थोड़ी सी सहानुभूति जो उसके टूटे दिलों को जोड़ दे. सहानुभूति जो आशा की किरण जगा दे. हृदय में अपनेपन का ऐसा जगाने वाला अद्भुत गुण है सहानुभूति. सहानुभूति अर्थात नुकसान होने पर शुभ भावना युक्त संवेदना प्रकट करना, बीमारी के समय मरीज का ढाढ़स बनाना व उसको हमदर्दी जताना, मृत्यु जैसे दुखद घटना में व्यक्ति को सांत्वना देना या धीरज देना, कमजोर व्यक्ति के कमजोरी के नाश के लिए शुभ भावना रखना भी सहानुभूति है. सहानुभूति समस्या में फंसे व्यक्ति को निकालने का मार्ग दिखाना और समस्या से उबरने के उपाय बताना भी सहानुभूति है. सहानुभूति दिखाने से भूतकाल की दुखद घटनाओं को भूलने की शक्ति जो मिलती है और मन के दुख के बोझ भी हल्के हो जाते हैं, पीड़ित व्यक्ति के दुख में कमी आती है. सहानुभूति से विपदा और नुकसान से उबरने के लिए मन में शक्ति भी पैदा होती रहती है. सहानुभूति मन की वेदना के लिए किसी दर्दनाशक औषधि के समान है. जब व्यक्ति अकेला होता है तो छोटी सी समस्या, थोड़ा सा दुख भी उसे पहाड़ जैसा लगता है. लेकिन दुख और समस्या में हमदर्दी या सहानुभूति दिखाने वाला मिल जाए तो पहाड़ भी राई समान छोटा और हल्का भासने लगता है. वास्तव में सहानुभूति से दया उपजती है और व्यक्ति सहयोग के हाथ अपने आप आगे बढ़ाता चला जाता है. सहानुभूति मदद की भावना को बढ़ावा देती है. विश्व की महान समाज सेवी मदर टेरेसा का दिल दुखी और बेसहाराओं के लिए सहानुभूति से सदा भरा रहता था, जिसके कारण ही जनसेवा से वे वर्ल्ड मदर कहलाई. ऐसे ही यीशु क्राइस्ट के हृदय में समाज से तिरस्कृत लोगों के लिए अथाह सहानुभूति थी और इसी सहानुभूति के कारण वे मानवता के अवतार कहलाए. अतः सहानुभूति को अपनाइए और मानवता का दर्शन कराइए. ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं.

0: वेणुधुनि 90.4 एफएम केएलई गणसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा वर्ष को भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक वर्ष बताया है। इस वर्ष 18 युद्धपोतों को नौसेना के बेड़े में शामिल करने की योजना है। नई दिल्ली में कल भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण में श्री सिंह ने कहा कि ये घटनाक्रम भारतीय नौसेना के घरेलू जहाज निर्माण तंत्र की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में नौसेना के प्रयासों को दर्शाते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत विनिर्माण तंत्र अब वैश्विक मानकों को पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए युद्धपोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। रक्षा मंत्री ने मौजूदा प्रणालियों के महत्व को पहचानते हुए भारत की समुद्री निगरानी प्रणाली के महत्वपूर्ण उन्नयन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समुद्री यातायात की बढ़ती मात्रा और जटिलता के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। अमेरिका की यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने अमेरिका के समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि बातचीत इस वर्ष 7 फरवरी को जारी संयुक्त बयान के अनुरूप अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने पर केंद्रित होगी। श्री गोयल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर हैं, जहां वे G20 बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए नियम आधारित खुले, समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं, कृषि व्यवसाय, खुदरा और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख अमरीका की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत ने परमाणु हथियारों से मुक्त और सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य निशस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में भारत का यह बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और संबंधित असहिष्णुता से लड़ने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब दौरे पर रहेंगे और जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। इन यात्राओं का मुख्य केंद्र पंजाब के सामने मौजूद 3 प्रमुख चुनौतियां हैं। इनमें मादक पदार्थों के बढ़ते दुरुपयोग, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित है, जो आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस दृष्टि को जल सुधारों के माध्यम से साकार किया गया है।
3: दशकों तक गुजरात बार बार पड़ने वाले सूखे और भीषण जल संकट की त्रासदी झेलता रहा। इस परिस्थिति को बदलते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल प्रबंधन को एक स्थायी व्यवस्था के रूप में स्थापित किया। चेक डैम, खेत तालाब, रिचार्ज वेल और नहरों के एक विशाल नेटवर्क की योजना तैयार की गई। सुजलाम सुफलाम जैसी दूरगामी पहल के जरिए बाढ़ के अधिशेष जल को 332 किलोमीटर से अधिक की लंबी नहरों के माध्यम से उत्तरी गुजरात के सैकड़ों गांवों तक पहुंचाया गया। वहीं ऐतिहासिक योजना के तहत नर्मदा के पानी को सौराष्ट्र के जलाशयों तक पहुंचाकर 10 लाख एकड़ से अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया। राज्य भर में 1.85 लाख से अधिक चेक डैम बनाए गए। जल संकट से जल सुरक्षा की इस अभूतपूर्व सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: मैंने दशकों से लटके पड़े सरदार सरोवर डैम का काम पूरा करवाया। गुजरात में सौनी योजना शुरू हुई, जहां पानी की अधिकता थी वहां से पानी जल संकट वाले इलाकों में पहुंचाया गया। आज गुजरात में हुए प्रयासों के परिणाम सारी दुनिया के सामने हैं।
3: जल सुरक्षा के इस विस्तृत तंत्र ने राज्य के लाखों किसानों के जीवन में स्थायित्व और आर्थिक समृद्धि का संचार किया है। सौनी योजना से अपने जीवन और खेती में आए सकारात्मक बदलाव को बयां करते हुए अमरेली जिले की महिला किसान लाभुबेन सरोला कहती है,
5: सौनी योजना के आने से हमारे गांव में नहर आई। पानी का इस्तेमाल करके मैंने मूंगफली और कपास जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाया है और कमजोर सालों में भी हमने अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। इसीलिए हम गुजरात सरकार और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।
3: आज गुजरात का यह दूरदर्शी जल प्रबंधन मॉडल पूरे देश के लिए जल संरक्षण, कृषि समृद्धि और सतत विकास की एक बेहतरीन मिसाल बना हुआ है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2018 में असम में बोगी पुल का उद्घाटन किया। ये पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है।
6: बोगीबील पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। 4.94 किलोमीटर लंबा यह दो स्तरीय रेल सह सड़क पुल भारत में अपनी तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। यद्यपि इसकी आधारशिला वर्ष 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने रखी थी, लेकिन कई वर्षों तक इसका निर्माण कार्य धीमी गति से चलता रहा। बाद में NDA सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग चिकित्सा, आपात स्थितियों, शिक्षा तथा अन्य कार्यों के लिए कुछ ही मिनटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: निर्वाचन आयोग युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष नामांकन शिविर चला रहा है। एक रिपोर्ट।
7: अगले महीने की 4 और 11 तारीख को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस वर्ष 1 अक्टूबर या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए आवेदक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 में आवेदन करें। निर्वाचन आयोग ने बताया कि अब तक दिल्ली में 400,000 से अधिक सुनवाइयां की जा चुकी हैं। आयोग ने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों से संबंधित नोटिस मिले हैं, उन्हें बूथ लेवल अधिकारी सहायता प्रदान करेंगे। बूथ लेवल अधिकारी ऐसे मतदाताओं के घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि अगले महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
8: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्सपर्ट @AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के पहाड़ी इलाकों में कल देर शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक शीर्ष आतंकवादी मारा गया। भारतीय सेना की कश्मीर स्थित चिनार कोर ने मारे गए आतंकवादी की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन अधिकारियों ने उसकी पहचान सुलेमान शाह उर्फ मूसा के रूप में की। मूसा पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल मैच में चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रथिका प्रदीप की भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 234-233 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। भारत ने हांगझोऊ में आयोजित 2023 एशियाई खेलों में महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता था। भारत प्रतियोगिता में अब 7 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदकों सहित कुल 53 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज तटीय आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
9: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हाल में मजबूत होते रिश्तों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तल्ख टिप्पणी अमर उजाला में है। पत्र लिखता है, अमेरिका ने आतंकवाद पर भारत की चिंता नहीं समझी तो रिश्तों पर असर। इसी खबर पर दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की सुर्खी है, पाकिस्तान से गलबहिया पर अमेरिका से बोले जयशंकर, आतंकवाद पर कोई सहानुभूति नहीं, इससे रिश्ते प्रभावित होंगे। दैनिक जागरण ने कैंसर की दवाओं पर अस्पतालों द्वारा 10 गुना तक कीमत बढ़ाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी प्रकाशित की है। अस्पतालों में 10 गुना कीमतों पर दवा बेचना नरसंहार। राजधानी में यातायात को नई रफ्तार देने के लिए बनाए गए बारापोला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर और मुकरबा चौक अंडरपास के उद्घाटन की भी खबर कई समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान ने सौगात शीर्षक से लिखा है, मयूर विहार से एम्स तक बिना रुके सफर करे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, मयूर विहार से एम्स की यात्रा 15 मिनट में। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से खबर छापी है, सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक जारी, जाट सिख प्रतिरोध भी 9वीं के कोर्स में शामिल। लिखा, एनसीईआरटी की नई किताब में मेवाड़ के रणबांकुरों की कहानी। पत्र ने कोलकाता में होने वाले एक भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का भी चित्र प्रकाशित किया है। पंडाल में 1000 किलोग्राम पुराने अखबारों से पंडाल से सजाएगा।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्ध पोत शामिल करेगी। ये इतिहास में एक वर्ष का सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम और पूर्वी राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आप ट्यून है और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM KLE कनसु।
10: केलीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल कडून केली फर्टिलिटी सेंटर सुरू झाले आहे। अत्याधुनिक IVF सुविधांसोबत सुसज्ज सेंटर OPD साठी तयार आहे। केली फर्टिलिटी सेंटर मध्ये आधुनिक प्रजनन सेवा देत आहोत, ज्यामध्ये समाविष्ट आहे प्रजनन औषध, क्लिनिकल एम्ब्रॉलॉजी, एंड्रोलॉजी आणि एंडोस्कोपी साठी विशेष OPD, 3D लॅप्रोस्कोपी आणि हिस्ट्रोस्कोपी सारख्या अत्याधुनिक एंडोस्कोपी सेवा सुद्धा, समर्पित फेटल मेडिसिन युनिट ज्यामध्ये एक इन हाऊस पूर्णवेळ सल्लागार असणार आहे. तज्ञ डॉक्टरांची टीम असेल. आम्ही आमच्या रुग्णांना सर्वोत्तम काळजी प्रदान करण्यासाठी तत्पर आहोत. आमचा पत्ता: केली फर्टिलिटी सेंटर, ओपीडी नंबर 97, शरावती, सेकंड फ्लोर, केलीज डॉक्टर प्रभाकर कोरी हॉस्पिटल आणि MRC. फोन नंबर 08312551530 आणि 247377 एक्सटेन्शन 1530.
11: ಬೆಳಗಾವಿಯ KLE ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
12: ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ನುರಿತ ತಜ್ಞರಿಂದ ತಪಾಸಣೆ, ಹೊರ ಹಾಗೂ ಒಳರೋಗಿ ವಿಭಾಗ ಅನುಭವಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಹೊಂದಿದೆ.
11: KLE ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ.
12: ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
11: KLE ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಹಪುರ, ಬೆಳಗಾವಿ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08312486286.

0: नमस्कार, आप सुन रहे वेणुधुनी 90.4 FM KLE कनसू। आज के इस विशेष प्रोग्राम में मनीषा आपका स्वागत करती है। सितंबर मंथ जो कि चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस मंथ हम सेलिब्रेट करते हैं, तो इसी के चलते बच्चों में कौन कौन से प्रकार के कैंसर होते हैं, क्या इसका इलाज है, इसके बारे में आज के एपिसोड में हम जान लेंगे। और इसी के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अभिलाषा, जो कि केली संपत कुमार शिवनगी कैंसर हॉस्पिटल की हेडिंग द डिवीजन ऑफ पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी, और उसी के साथ केली जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी है। मैम, वेणुधुन के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू मिसेस मनीषा, ग्रीटिंग्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट केली कैंसर हॉस्पिटल। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: आज हम चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस मंथ, जो अभी सितंबर मंथ पूरा हो चुका है, उसके बारे में जान लेंगे। सबसे पहले तो बच्चों में होने वाले जो कैंसर है वो कौन कौन से प्रकार के हैं?
1: बच्चों में बहुत प्रकार के कैंसर होते हैं। हर साल हमारे देश में लगभग 50,000 से 60,000 50,000 to 60,000 न्यू केसेस आर डायग्नोस्ड एवरी ईयर। उसमें जो सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है बच्चों में वो है ब्लड कैंसर।
0: अच्छा।
1: उसमें एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जो कि एक तरह का ब्लड कैंसर है, वो सबसे ज्यादा कॉमन है। सो 40% ऑफ द केसेस आर ऑफ ब्लड कैंसर। सो बट द गुड न्यूज इज, जो सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, उसका क्योर रेट ऑलमोस्ट 80-90% है।
0: ओके।
1: उसके बाद जो सेकेंड कॉमनेस्ट कैंसर है अपार्ट फ्रॉम ल्यूकीमियाज इज लिम्फोमास, देन वी हैव ब्रेन ट्यूमर्स, देन पेट का अलग तरह का के कैंसर्स होते हैं, जैसे कि किडनी ट्यूमर्स, न्यूरोब्लास्टोमास, फिर बोन कैंसर्स, बोन ट्यूमर्स, फिर मसल के कैंसर्स जैसे कि राबडोमायोसार्कोमास, देन आईज के कैंसर जैसे रेटाइनोब्लास्टोमा जो आईज में होता है। सो ये सब, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स, बट यस द कॉमनेस्ट इज ब्लड कैंसर, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया इज द कॉमनेस्ट फॉलोड बाय अदर।
0: तो बच्चों में इतने सारे कैंसर पाए जाते हैं, जैसे कि आपने अभी आंकड़ा भी बताया कि 50-60,000 ईयरली डायग्नोस होते हैं, तो इतना कैसे क्या बढ़ गया है कैंसर का प्रमाण?
1: बिल्कुल, ये हर पेरेंट्स जिनके बच्चों का कैंसर डायग्नोस होता है उनका फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि आप बच्चों में भी कैंसर होता है, बिकॉज वो ऐसा सोचते हैं कैंसर सिर्फ बड़ों की बीमारी है।
0: करेक्ट
1: ना, लेकिन बच्चों में ऑब्वियसली बड़ों के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, लेकिन बच्चों में भी कैंसर कॉमन है। सो जैसे बड़ों में हम बोलते हैं कि कैंसर इज कैन बी ड्यू टू लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, यू नो, लाइक ज्यादा स्मोकिंग या अल्कोहल या लैक ऑफ एक्सरसाइज, ऑल दीज थिंग्स। बट बच्चों में इट इज़ नॉट ड्यू टू लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, बट इट कैन बी ड्यू टू जेनेटिक, आई मीन देर आर सम जेनेटिक सिंड्रोम्स, सो कैंसर कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, दोज आर नॉट वेरी कॉमन, देन सम अदर जेनेटिक फैक्टर्स। फिर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगर हम देखें तो जैसे पेस्टिसाइड्स, या फिर रेडिएशन एक्सपोजर, या फिर सम वायरल इन्फेक्शंस लाइक एप्स्टीन बार वायरस, ऐसे ये सारे कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं बच्चों में कैंसर के, बट एग्जैक्ट कॉज पिन पॉइंट करना ऐसा नहीं बोल सकते। मेनली बच्चों में इट्स काइंड ऑफ जेनेटिक, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेरेंट्स से आया है और हमेशा पेरेंट्स को ब्लेम करना है, इट्स नॉट लाइक दैट, ये दिस इज अ मिथ अबाउट चाइल्डहुड कैंसर।
0: कई केसेस में ऐसा भी पाया जाता है मैम कि जेनेटिक भी नहीं होता फिर भी कैंसर डायग्नोस होता है, तो जैसे कि आप अभी बोल ही रही है कि उसका एग्जैक्ट रीजन हम नहीं बोल सकते, काफी सारे रीजन रह सकते हैं, फिर भी एक चिंता रहती है कि क्यों ऐसे हो गया और क्या करना चाहिए। ये कैंसर सुन के ही लोग घबरा जाते हैं, तो इसके लिए क्या बोलेंगे आपके, क्या करना चाहिए?
1: Yeah, so I would like to start on a positive note. पहले तो घबराना नहीं चाहिए, इट्स होपलेसनेस वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए, इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड बी होपफुल अबाउट इट, बिकॉज बच्चों के कैंसर का क्योर रेट बहुत अच्छा है।
0: अच्छा।
1: है ना, बच्चे कीमोथेरेपी बहुत अच्छा टॉलरेट करते हैं, और अगर सही टाइम पे डायग्नोसिस हो और सही तरीके से उनका ट्रीटमेंट हो तो हम बच्चों को, आई मीन द कैंसर कैन बी कम्प्लीटली क्योर्ड इन अराउंड 70-80% ऑफ द केसेस, एंड वो दे कैन लिव फॉर नेक्स्ट 50-60-70 ईयर्स। तो सबसे पहले तो वी शुड नॉट लूज होप्स, घबराने की बात नहीं है, एंड अवेयरनेस होना चाहिए, जिससे कि कैंसर का मैंने बताया कि क्योर रेट बहुत अच्छा है, बट वो अच्छा तब है अगर कैंसर टाइम पे डायग्नोस हो जाए और सही तरीके से ट्रीटमेंट हो। तो टाइम पे डायग्नोस होने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स या जनरल पब्लिक को कैंसर के जो इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग साइंस, वार्निंग साइंस जो बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हो, क्योंकि जो कैंसर होता है बच्चों का वो दे मिमिक नॉर्मल चाइल्डहुड इलनेसेस। फॉर एग्जाम्पल फीवर इज वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन. अब मैं इस माध्यम से पेरेंट्स को डराना नहीं चाहती कि एवरी फीवर इज कैंसर. नो, जैसे कि किसी भी बच्चे को बुखार चल रहा है, फीवर इज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जिसका कि कोई डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, कोई इन्फेक्शियस कॉज या कोई अंडरलाइंग हमें पता नहीं चल रहा है, तो उसमें एक हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस जिसको बोलते हैं, एक सस्पिशन कैंसर का भी होना चाहिए और कैंसर का भी वर्कअप होना चाहिए. नॉट इन एवरी सिंपल फीवर विच इज ड्यू टू कॉफ, कोल्ड और सिंपल इन्फेक्शन, बट दैट इज नोन एज पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, जो बहुत लंबे समय से बुखार चला जा रहा है, बच्चों को एंटीबायोटिक्स मिल चुका है, कॉमन इलनेसेस का ट्रीटमेंट मिल चुका है, फिर भी बच्चे को बुखार हो रहा है, तो फीवर विच इज अ वेरी कॉमन सिम्टम इन चिल्ड्रन, बट दैट कैन बी अ सिम्टम ऑफ कैंसर एज वेल. सेकेंड, यूजुअली बच्चे क्या होते हैं, दे आर वेरी एक्टिव, दे आर वेरी प्लेफुल, उनका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है, बट आप किसी भी बच्चे को देख रहे हैं कि ही इज गेटिंग टायर्ड वेरी इजिली, है ना, इजी फटीगेबिलिटी, और द चाइल्ड इज लुकिंग पेल, उसका रंग थोड़ा सा सफेद हो रहा है, तो हम पेरेंट्स यूजुअली, हर पेरेंट्स को, हर एक स्पेशली मदर्स को ऐसा लगता है माई चाइल्ड इज नॉट ईटिंग प्रॉपरली, मेरा बच्चा ठीक से खा नहीं रहा है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से वो पेल हो रहा है या उसकी वजह से उसके एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो रहे हैं, बट दिस कुड बी अ साइन ऑफ कैंसर. जैसा कि मैंने बताया ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर में हमारे तीन तरह के सेल्स अफेक्ट हो सकते हैं, एक रेड ब्लड सेल जिसकी कमी की वजह से अनीमिया होता है, तो रेड ब्लड सेल कम होने की वजह से बच्चा बहुत जल्दी थक सकता है, वाइट ब्लड सेल, ओके, न्यूट्रोफिल्स, उसमें अगर वो कम हो गया तो बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, तो किसी बच्चे को रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, या प्लेटलेट्स, दीज आर द थ्री कॉम्पोनेंट्स, ना, तो अगर प्लेटलेट कम होने की वजह से, जो कि डेंगू में भी अक्सर कम होता है, तो वो अगर कम होने की वजह से बच्चे को ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे बॉडी पे ब्रूजेस आने, नीले निशान पड़ना, है ना, या कहीं से नाक से मुंह से ब्लीडिंग होना, तो ये सब बहुत कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि दूसरी बीमारियों में भी हो सकता है, बट ये कैंसर के भी लक्षण हो सकते हैं.
0: अच्छा.
1: हाँ, उसी तरह जैसे कहीं पे गांठ आना, मैंने बताया ल्यूकेमियास के बाद नेक्स्ट कॉमन कैंसर इज आफ्टर ब्रेन ट्यूमर इट इज लिम्फोमास, तो कहीं पे भी गांठ आना, लिम्फ नोड्स जो बोलते हैं उनका बड़ा हो जाना, या कहीं पे ऐसा स्वेलिंग दिखना शरीर के किसी हिस्से में, वो भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है. एक सिम्टम जिसकी वजह से डायग्नोसिस हमेशा, मतलब काफी सिचुएशन में डिले हो जाता है, जिसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, वो है बोन पेन. छोटे बच्चे अगर कंप्लेन करते हैं कि उनको बहुत सिवियर बोन पेन हो रहा है, हाथ पैर में दर्द, यूजुअली आई मीन एवरी बोन पेन इज नॉट कैंसर, देयर समथिंग नोन एज ग्रोइंग पेन्स, वो बच्चे बढ़ते बच्चों में कॉमन है, लेकिन अगर वो पेन इतना सिवियर है कि बच्चे उसकी वजह से सो नहीं पा रहे हैं या उनको चलने में तकलीफ हो रही है, तो बोन पेन कैन ऑल्सो बी अ साइन ऑफ कॉमन चाइल्डहुड कैंसर्स लाइक ल्यूकेमियास. यूजुअली अगर कहीं पे बोन पेन हुआ बच्चों को, तो हम सोचते हैं कहीं गिर गया होगा, इट इज यूजुअली एट्रीब्यूटेड टू सम इंजुरी ट्रॉमा, बट दैट हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली. देन बड़े लोगों में हेडेक कॉमन है, यू नो, स्ट्रेस हेडेक, बट बच्चों में हेडेक कॉमन नहीं है, बट इफ अ चाइल्ड इज यू नो कंप्लेनिंग ऑफ रिपीटेड हेडेक, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग हेडेक विच इज एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग, हेडेक विथ वॉमिटिंग स्पेशली अर्ली मॉर्निंग एंड प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, दैट इज अ रेड फ्लैग साइन ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स, बिकॉज बच्चों में सेकंड कॉमनेस्ट कैंसर जो है वो है ब्रेन ट्यूमर्स, सो दैट शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड. या किसी बच्चे को चलने में तकलीफ हो रही है, उसका बैलेंस ठीक नहीं है, सो दैट कैन बी अ साइन ऑफ ब्रेन ट्यूमर. देन एक आईज का कैंसर मैंने बताया, रेटाइनोब्लास्टोमा, तो अगर आईज में मतलब प्रोप्टोसिस जिसको बोलते हैं, आंखें बाहर आ रही हैं, मतलब, तो उस केस में डायग्नोस करना इजी है, लेकिन देयर इज समथिंग नोन एज वाइट आई रिफ्लेक्स. आजकल जैसे सेल्फी लेते हैं या फोटोज में अगर उनको लग रहा है कि आंखों की जो जैसे कैट की आईज में वैसा वाइट आई रिफ्लेक्स, कैट आई रिफ्लेक्स, आंखें चमक रही हैं, सो दैट कैन बी अ साइन ऑफ रेटाइनोब्लास्टोमा. So that is often picked up late stage में हमारे पास वो आते हैं. तो ये subtle signs and symptoms which mimic common illnesses, you know, like simple infection, nutrient deficiency, bone pain. अगर इन सब की knowledge हो और parents जल्दी बच्चों को doctor के पास ले आए और वो जल्दी diagnose हो जाए, तो उसका treatment भी simple होता है और prognosis भी बहुत अच्छा होता है, cure के chances और बढ़ जाते हैं. So डरने की बात नहीं है, awareness फैलाना है.
0: करेक्ट. इतने सारे जो आपने कैंसर बताए और उसके सिम्टम्स भी आपने अच्छी तरह से समझा दिए, कुछ एक एग्जाम्पल हम लेंगे कि जो बहुत कॉमन आप बोल रही है अभी कि ब्लड कैंसर बहुत ही कॉमन है, अगर वो किसी को डायग्नोस हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे रहता है और क्या होता है वो पेशेंट के साथ?
1: ओके. सो कैंसर ओवरऑल अगर हम कैंसर का ट्रीटमेंट लें तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है. जहाँ तक बच्चों के कैंसर की बात है जिसमें सबसे कॉमन ब्लड कैंसर है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो यूजुअली कीमोथेरेपी का होता है. ओके. और जो सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया किडनी ट्यूमर्स, रीनल ट्यूमर्स लाइक विल्म्स ट्यूमर, ओके, न्यूरोब्लास्टोमा या बोन ट्यूमर्स, रैबडोमायोसारकोमा, ऐसे जो ट्यूमर्स होते हैं सॉलिड ट्यूमर्स, उसमें सिर्फ कीमोथेरेपी काफ़ी नहीं है. कीमोथेरेपी के साथ सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है, एंड डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द ट्यूमर एंड साइट ऑफ द ट्यूमर, रेडिएशन थेरेपी. सो थ्री मेन मॉडालिटीज, कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, ये तीन तो होता ही है, और कुछ कुछ कैंसर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी जरूरत लगती है, स्पेशली दोज कैंसर्स विच हैव रिलैप्स्ड, जो दोबारा आ गया है ब्लड कैंसर, या फिर सम ब्लड कैंसर्स विच आर रिफ्रैक्ट्री, जो सिंपल कीमोथेरेपी से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या फिर एडवांस सॉलिड ट्यूमर्स जैसे कि न्यूरोब्लास्टोमा स्टेज 4, तो उसमें ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करना पड़ता है. तो दीज आर द मेन मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट. इसके साथ साथ देर आर सम रीसेंट एडवांसेस, लाइक अभी इम्यूनोथेरेपी है, जैसे कार टी सेल थेरेपी, अगर आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, ल्यूकीमियाज के लिए, या आजकल टारगेटेड थेरेपी है. सो दीज आर द कॉमन मोडालिटीज. बट आपने बिकॉज ब्लड कैंसर की बात की, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, सो 70-80% ऑफ द केसेस में सिर्फ कीमोथेरेपी से ही काम चल जाता है. कुछ केसेस में रेडियोथेरेपी की भी जरूरत पड़ती है, जैसे ब्रेन में भी अगर वो पॉजिटिव है या रिलैप्स हो गया है, और कुछ केसेस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है.
0: कैंसर बोले तो कीमोथेरेपी ये सबको अभी कॉमनली पता है, और ये भी जानते हैं कि कीमोथेरेपी से बहुत तकलीफ होती है या फिर साइड इफेक्ट्स उसके हैं, तो क्या है एक्चुअल?
1: एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स एसोसिएटेड विद कीमोथेरेपी. हाँ, थोड़ा साइड इफेक्ट होता है, बट बच्चे कीमोथेरेपी को बहुत अच्छा टॉलरेट करते हैं. अच्छा. इतना साइड इफेक्ट्स भी नहीं है अगर वो प्रॉपरली दिया जाए. सो बच्चों का जो डोज होता है कीमोथेरेपी का, वो बॉडी सर्फेस एरिया के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, कि जितना उसका बॉडी सर्फेस एरिया उसके अकॉर्डिंग, या आजकल इतने सारे एडवांस टेस्ट है कि कौन सा बच्चा किस कीमोथेरेपी को कैसे मेटाबोलाइज करेगा, कैसे टॉलरेट करेगा, तो उसके भी कुछ टेस्ट होते हैं जिसके बेसिस पे हम डोज को मॉडिफाई कर सकते हैं. तो इन सब चीजों का, कीमोथेरेपी के पहले बच्चे को कैसे हाइड्रेशन देना है, और जो टॉक्सिसिटी जो हम पहले से एंटिसिपेट कर रहे हैं उसको कैसे मैनेज करना है, तो ये अगर एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन के पास और एक अच्छे सेंटर पे जहाँ पे ऐसे डिजीजेस को ट्रीट करने का अच्छा एक्सपीरियंस है, तो इसके टॉक्सिसिटीज को बहुत लेवल तक कम किया जा सकता है. तो इसके सारे टॉक्सिसिटीज देर आर फ्यू टॉक्सिसिटीज, बट दे कैन बी मैनेज वेरी वेल. फॉर एग्जाम्पल, कीमोथेरेपी के बाद बच्चों को वॉमिटिंग होती है, हम जानते हैं ये, तो उसके लिए बहुत अच्छे एंटीएमेटिक्स हैं जो कि हम प्रोफाइल प्रैक्टिकली बच्चों को देते हैं, ताकि वॉमिटिंग से या बच्चा डिहाइड्रेट नहीं हो, उसको ज्यादा तकलीफ नहीं हो. सो लाइक दिस, कीमोथेरेपी से इतना डरने की बात नहीं है.
0: अच्छा.
1: उसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है, और बच्चों का लिवर, किडनी सब स्ट्रांग होता है, तो वो बहुत अच्छे से मेटाबोलाइज करते हैं ड्रग्स को. सो एवरी टॉक्सिसिटी इज मैनेजेबल.
0: जबकि अभी बच्चों की बात हो रही है मैम, तो कौन से एज ग्रुप में, मतलब बच्चों का जो कैंसर है वो पाया गया है, मतलब अभी 10th के बाद, मतलब एज ऑफ 10, या फिर बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनमें से ही स्टार्ट हुआ है, क्या है वो?
1: ओके. सो बच्चों का कैंसर किसी भी एज में हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूबॉर्न. एक नवजात शिशु भी कैंसर के साथ पैदा हो सकता है.
0: अरे बाप रे.
1: टिल हमारा जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, दैट इज टिल 18 इयर्स. अभी AYA, एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट्स, जिसमें कि हम 21-22 इयर्स तक भी ट्रीट करते हैं. सो किसी भी एज में हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन अगर देखा जाए तो 50% ऑफ द चाइल्डहुड कैंसर्स आर बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स, बट इट कैन बी इन एनी एज, एडोलेसेंट, यंग एडल्ट्स, इवन अ न्यूबॉर्न चाइल्ड कैन बी बॉर्न विद कैंसर.
2: KLE Cancer Hospital, Belagavi.
3: ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ಹಾಗೂ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ
2: KLE Cancer Hospital, KLE's Dr. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ MRC ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನೆಹರು ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜೀವ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಆಶಾ ಕಿರಣವಾದ KLE Cancer Hospital, ಬೆಳಗಾವಿ. ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
3: KLE Cancer Hospital, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ರಕ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅನ್ನನಾಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
2: ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ BMT ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
3: ವಿಳಾಸ KLE ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, KLE's ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು MRC ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನೆಹರು ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ.
2: ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0831255250 ಮತ್ತು 2473777, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 6360712326 or just dial 1099.
3: ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ KLE ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಬೆಳಗಾವಿ.

0: तो जैसे कि आपने बताया कि शरीर पे जो नीले निशान या गांठ दिखाई देती है, तो वैसे कुछ अगर दिखाई दे तो क्या करना चाहिए?
1: ओके, सो शरीर पे नीले निशान जो कि स्किन ब्लीड्स है ना, जिसको हम बोलते हैं पेटिकिया, परप्यूरा और एकाइमोसिस, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैंसर में ही होता है, क्योंकि ये इट्स वेरी कॉमन इन द पीडियाट्रिक एज ग्रुप, और पेरेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी भी ऐसे कंडीशन में जिसमें प्लेटलेट्स कम हो गया है, या बच्चे को एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं वैस्क्यूलाइटिस, उसमें ऐसे नीले निशान दिख सकते हैं। बट येस, इट इज़ अ रेड फ्लैग साइन। तो कभी भी ऐसा नीला निशान दिखे या बच्चे को कहीं से खून आ रहा है नाक से मुंह से, तो तुरंत उनको जाके एक सिंपल ब्लड टेस्ट, आई मीन अपने नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट थिंग, और उनके एडवाइस से एक सिंपल ब्लड टेस्ट, सीबीसी जिसको हम बोलते हैं, हीमोग्राम, वो करवाना चाहिए। तो उसमें वो देखते हैं कि प्लेटलेट का कम है, या फिर उनका पीटीएपीटीटी जिसको हम कोएगुलेशन प्रोफाइल बोलते हैं, वो डीरेंज्ड है, और उसके अकॉर्डिंग इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए ताकि बच्चे को कोई इंटरनल ब्लीडिंग ना हो, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, इट कैन बी डेंजरस। सो अप्रोच योर पीडियाट्रिशियन एट द अर्लीस्ट, जो भी आपके नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली कैंसर के डॉक्टर के पास ही जाना है, और ये वेरियस ब्लड डिसऑर्डर्स में भी ऐसा हो सकता है, जैसे द वेरी कॉमन कंडीशन आईटीपी, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उसमें भी बच्चों के बॉडी पे ऐसे नीले निशान हो सकते हैं। तो इट्स नॉट ऑलवेज ड्यू टू कैंसर, उसमें डरने की बात नहीं है, बट येस, दिस इज अ रेड फ्लैग साइन।
0: अगर कोई बच्चा कैंसर से पीड़ित है तो उनका क्या रहना चाहिए, लाइफस्टाइल बोलिए या फिर डाइट प्लान उनका कैसे रहना चाहिए?
1: ओके, सो बिफोर गोइंग टू दैट, बच्चे का ट्रीटमेंट कैसे सेंटर पे होना चाहिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वहाँ पे वो आपको प्रॉपरली एक एक चीज के लिए गाइड करेंगे।
0: सी,
1: बच्चों का जो कैंसर होता है, इट इज नॉट लाइक, चिल्ड्रन आर नॉट मिनिएचर एडल्ट्स, है ना, कि सो उनका इट्स अ ग्रोइंग चाइल्ड, डेवलपिंग चाइल्ड, उनका देयर बॉडी इज ग्रोइंग, देयर नीड्स आर डिफरेंट, है ना, और मैंने डिफरेंट ट्रीटमेंट मॉडलिटीज के बारे में बताया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी बच्चे का जब कैंसर डायग्नोस होता है तो दे शुड गो टू अ सेंटर वेयर ऑल दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल अंडर वन रूफ।
0: करेक्ट,
1: बिकॉज यू नो इन चाइल्डहुड कैंसर और इन एनी कैंसर फॉर दैट मैटर, फर्स्ट चांस इज द बेस्ट चांस। जब पहली बार हम ट्रीट करते हैं तो ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और चाइल्डहुड कैंसर में तो बहुत ज्यादा अच्छा क्योर रेट है ना। तो ऐसे जगह पे जाना जहाँ सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, वेर यू हैव अ ट्रेंड, वेरी वेल ट्रेंड पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट, वेर यू हैव अ पीडियाट्रिक सर्जन, पीडियाट्रिक ऑन्को सर्जन, वेर यू हैव अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, एंड आजकल ये भी देखना चाहिए जहाँ पे ट्रांसप्लांट की भी फैसिलिटीज अवेलेबल हो। तो बच्चों का जो ट्रीटमेंट होता है कैंसर का, तो कीमोथेरेपी, ये एक फिक्स प्रोटोकॉल होता है जो हम वर्ल्ड वाइड फॉलो करते हैं एट एवरी सेंटर, जो वर्ल्ड वाइड एविडेंस बेस्ड, जो मोस्ट एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल है, वो फॉलो करके हम कीमोथेरेपी देते हैं। हाँ, कीमोथेरेपी, गिविंग कीमोथेरेपी इज एन आर्ट, इट्स नॉट कि कोई भी वो इंजेक्शन को दे सकता है, तो उसको देने के लिए भी हमें ट्रेंड लोग चाहिए होते हैं, जैसे कि वी शुड हैव अ प्रॉपर ऑन्को फार्मासिस्ट, ऐसा वहां पे आइसोलेशन रूम्स होने चाहिए न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स के लिए, कीमोथेरेपी रिकॉन्स्टिट्यूशन यूनिट होना चाहिए, है ना। तो ये हो गई बात, ट्रेंड नर्सेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नर्सेज आर द बैकबोन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पीडियाट्रिक कैंसर्स। तो ये सब होना चाहिए, साथ ही साथ जैसा कि आपने बात की क्या केयर, तो एक अच्छी ट्रेंड ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइटिशियन होनी चाहिए जो कि क्या खाना है बच्चों को वो बताया, मैं उसके बारे में भी बात करूंगी। ये सारी इन्फेक्शन कंट्रोल पर्सन होना चाहिए, है ना, सो जहाँ पे ये सारी, और एक अच्छा ब्लड बैंक होना चाहिए, और दूसरे स्पेशलिटीज का भी बैकअप हो, जैसे अ गुड आईसीयू केयर इज अवेलेबल, है ना, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, बच्चों में पिक लाइन्स, कीमोपोर्ट, इन सब की जरूरत होती है, तो जहाँ पे डायग्नोस्टिक वर्कअप अच्छा हो सके, सो जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो वहाँ पे होना चाहिए। जहाँ तक ओवरऑल केयर की बात है, तो आपने बोला और क्या उनको सपोर्टिव केयर अच्छा देना चाहिए, तो चाइल्डहुड कैंसर में सपोर्टिव केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने डाइट की बात की, तो ये जो बच्चे होते हैं, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स की हम बात कर रहे थे, तो वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी अपार्ट फ्रॉम हेयर फॉल, बालों का झड़ना या वॉमिटिंग, दीज आर कॉमन साइड इफेक्ट्स, वन साइड इफेक्ट विच वी हैव टू मैनेज वेरी इफेक्टिवली इज फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया। जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो कीमोथेरेपी कैंसर के सेल्स पे तो काम करता ही है, कैंसर के सेल्स को किल करने के लिए, बट उसके साथ साथ हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स भी अफेक्टेड होते हैं, तो जिसकी वजह से WBC में जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो काफी कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स काफी कम हो जाते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स कम होने की वजह से बच्चों की इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है। जैसे हमें नॉर्मल सर्दी खांसी होती है तो हम अपनी इम्यूनिटी से ही 6-7 दिन में ठीक हो जाते हैं, बट इन बच्चों में एक सिंपल सर्दी खांसी, सिंपल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, जानलेवा हो सकती है, बिकॉज दे डोंट हैव न्यूट्रोफिल्स, स्पेशली वो जब इंटेंसिव फेज ऑफ कीमोथेरेपी होता है, जब हम बहुत स्ट्रांग कीमोथेरेपी देते हैं और बच्चों का न्यूट्रोफिल्स जीरो होता है, तो उस पीरियड में हम पेरेंट्स को स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं कुछ कुछ ट्रीटमेंट जो होता है डे केयर बेसिस पे भी होता है, जब हम बच्चों को कंटिन्यूअसली हॉस्पिटल में नहीं रखते क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट काफी लंबा चलता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वो आते हैं, कीमोथेरेपी लेते हैं, फिर घर चले जाते हैं, तो घर पे उनको कैसे केयर करना है? तो बच्चों को ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं हो, उनका एक सेपरेट रूम होना चाहिए। हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, तो हम पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं कि कैसे उनको हैंड वॉश करना है, सैनिटाइजर यूज करना है, खाने के लिए फ्रेशली कुक्ड फूड, अब कल रात का बना या सुबह का बना हुआ खाना फ्रिज में रख के शाम को देना वो नहीं हो सकता, दे हैव टू बी गिवन फ्रेशली कुक्ड फूड। वो हमेशा पूछते हैं कौन सा फ्रूट दे सकते हैं, सो यू कैन नॉट गिव एनी फ्रूट विच डजंट हैव अ थिक पील, जैसे कि चीकू, कीवी, ग्रेप्स।

0: और फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया जब फीवर आया तो क्या करना है, क्या क्या वार्निंग साइंस है, एक मैंने आपको बताया फीवर, या फिर बच्चे को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है या लूज मोशन हो रहा है तो वो डिहाइड्रेट होने के पहले उनको हॉस्पिटल में पहुंच जाना है, है ना, या कहीं से पस डिस्चार्ज हो रहा है, या बच्चा बहुत डल या लेथार्जिक है, या ब्लीडिंग, दैट इज अ वेरी बिग वार्निंग साइन, कहीं से भी ब्लीडिंग हो रहा है इसका मतलब जैसे इनका न्यूट्रोफिल काउंट कम हो जाता है कीमोथेरेपी की वजह से, वैसे इनका प्लेटलेट काउंट कम होता है कीमोथेरेपी की वजह से, तो हमें उनका हर दो दिन तीन दिन पे डिपेंडिंग ऑन द फेज ऑफ कीमोथेरेपी उनका सीबीसी करते हैं, उनका प्लेटलेट काउंट देखते हैं, अगर कम है तो हम उनको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं, है ना। तो अगर बच्चे को थोड़ा सा भी कहीं दिख रहा है ऐसा ब्लीडिंग स्पॉट है या कहीं से खून आ रहा है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल आना है और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करना है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट आउटकम कैसा होगा, नॉट जस्ट द कीमोथेरेपी की हम क्या इंजेक्शन दे रहे हैं, क्या प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, वो तो वर्ल्ड वाइड सेम प्रोटोकॉल इज फॉलोड एवरीवेयर बेस्ड ऑन द एविडेंस। सो दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे शुड नॉट गो टू एनी क्राउडेड प्लेस, समटाइम्स द किड्स विल लुक कम्प्लीटली लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड, यू नो, उनको देख के कोई बोल नहीं सकता है कि इनको कैंसर है आफ्टर सर्टेन यू नो पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट, दे वॉन्ट टू गो आउट, आई मीन किड्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द किड्स, दे वॉन्ट टू प्ले, सो इन सब चीजों का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है।
1: बिल्कुल, काफी अच्छी तरह से समझाया मैम आपने। और मान लीजिए कि किसी को अगर कैंसर अभी डायग्नोस हो गया, ट्रीटमेंट भी कम्प्लीट हो गया, तो रिपीटेडली वो कैंसर मतलब वापस आने के चांसेस रहते हैं क्या?
0: यस, अराउंड कुछ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कैंसर, किस स्टेज पे वो डायग्नोस हुआ था, उसका हम रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन ऑल द साइटोजेनेटिक्स मॉलिक्यूलर स्टडीज एवरीथिंग। तो जो हाई रिस्क कैंसर होते हैं उनके वापस आने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं।
1: अच्छा।
0: कभी कभी स्टैंडर्ड रिस्क वाले कैंसर भी वापस आते हैं, बट ऐसा नहीं कि हर कैंसर वापस आता है। येस, अराउंड 20-25% ऑफ द केसेज इट मे कम बैक डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कैंसर। तो लेकिन वापस आने के बाद भी उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। फर्स्ट टाइम जब हम ट्रीट करते हैं तो उसके ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, सेकंड टाइम थोड़े कम होते हैं, बट सेकंड टाइम भी होता है, है ना, कि जैसे मैंने ब्लड कैंसर का एग्जांपल बताया, तो अगर सेकंड टाइम बहुत अर्ली आ गया, ट्रीटमेंट खत्म करने के बहुत कुछ ही समय बाद अगर वो कैंसर वापस आ गया है तो उसमें ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, बट इवन दैट हैज अ क्योर, सो वी शुड नॉट लूज होप्स देयर।
1: ट्रांसप्लांट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि कौन से स्टेज पे ट्रांसप्लांट किया जाता है।
0: ओके, सो इट फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द कैंसर। तो अभी हम बिकॉज हम सिर्फ कैंसर्स की बात कर रहे हैं, बिनाइन कंडीशंस की बात नहीं कर रहे हैं। ट्रांसप्लांट बिनाइन कंडीशन मतलब नॉन कैंसरस कंडीशन जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इनबॉर्न एरर्स ऑफ इम्यूनिटी, उसमें भी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, बट अभी हम सिर्फ कैंसर की बात करेंगे। तो अभी बच्चों के कैंसर में जो दो तरह का ट्रांसप्लांट होता है, एक होता है ऑटोलॉगस और एक होता है एलोजेनिक।
1: अच्छा।
0: तो जो सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं जैसे कि न्यूरोब्लास्टोमा जो स्टेज फोर है, हाई रिस्क है, उसमें हमें ट्रीटमेंट इनिशियल कीमोथेरेपी सर्जरी करने के बाद ट्रांसप्लांट करना ही होता है, सो दैट इट इज कॉल्ड लाइक वी आर कंसोलिडेटिंग द ट्रीटमेंट, ताकि कैंसर पूरी तरह से क्योर हो जाए और उसके वापस आने के चांसेस बहुत कम हो जाए। लिम्फोमास जैसे कि कॉमनली आजकल हम हॉजकिंस लिम्फोमा में जो रिलैप्स या रिफ्रैक्ट्री केसेस हैं उसमें ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट। Then, so this autologous transplant is simple. It's not that complicated. It is like stem cell rescue because chemotherapy की वजह से उनका जो normal bone marrow के cells थे वो चले गए हैं, तो उसको हम एक we are giving them stem cells to create a new marrow. सबसे commonest indication है वो usually relapsed या refractory leukemias में, स्पेशली एक्यूट माइलॉइड लुकीमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया या CML इन ब्लास्ट क्राइसिस वाले पेशेंट्स जो कि वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, सो ऐसे केसेस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। तो उसमें डिपेंड करता है कि अगर आप बच्चे को कोई मैच्ड फैमिली डोनर मिल गया, स्पेशली अगर मैच सिबलिंग भाई बहन जो कि फुल्ली HLA मैच्ड हैं या पेरेंट्स जो कि मैच्ड हैं, तो उसमें ट्रांसप्लांट थोड़ा आसान हो जाता है और उसका आउटकम भी बहुत अच्छा होता है और उसका कॉस्ट इन्वॉल्व इज ऑल्सो लेस। अगर मैच नहीं भी मिला कोई फैमिली में तो there is something known as matched unrelated donor, worldwide HLA registry होती है जिससे कि हम unrelated matched donor भी ढूंढ सकते हैं, या फिर we do half match transplant जिसको कि haplo transplant बोलते हैं, वो थोड़ा complicated होता है but उसमें भी cure rates अच्छे हैं।
1: ये bone marrow कौन donate कर सकता है, मतलब उसकी condition क्या रहनी चाहिए जो डोनर रहता है?
0: ओके, सबसे तो पहले तो डोनर मैंने बताया दो तरह का मैच होता है, एक फुल मैच जो कि सबसे अच्छा है, या अगर फुल मैच हमें सिर्फ 20% केसेस में मिलता है।
1: करेक्ट।
0: तो बहुत सारे लाइक हाफ मैच ट्रांसप्लांट्स भी करने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पर्सन शुड बी डिजीज फ्री, ओके कि उसको वो बीमारी नहीं होनी चाहिए, वो फिजिकली फिट होना चाहिए, इस कंडीशन में होना चाहिए कि वो डोनेट कर सके. उसके पहले हम उनका ब्लड टेस्ट करते हैं कि उनके अकाउंट्स सब कुछ ठीक है. और फिर इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, इट्स नॉट लाइक, क्योंकि जब भी हम डोनेशन के लिए काउंसिल करते हैं रिलेटिव्स को तो दे गेट्स के वो डर जाते हैं, उसको तो नहीं होगा ना इतना, स्पेशली बच्चों के ट्रांसप्लांट में. अगर भाई बहन डोनेट कर रहे हैं, अभी हमने जो रिसेंट ट्रांसप्लांट किया उसमें 3 साल की बच्ची ने अपना डोनेट किया स्टेम सेल्स, तो वो बहुत डर जाते हैं. लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट में ऐसा नहीं है कि

0: लिवर या किडनी निकाल रहे हैं उनका. इट इज जस्ट, वी आर जस्ट टेकिंग देयर स्टेम सेल्स. तो हम उनको कुछ इंजेक्शंस देते हैं जिसको बोलते हैं कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स. वो देके हम उनका स्टेम सेल्स मोबिलाइज करते हैं. और जैसे पेशेंट से प्लेटलेट अगर आपने कभी डोनेट किया हो, SDP जैसे जिस मशीन से डोनेट, एफेरेसिस करके हम उनका स्टेम सेल्स निकालते हैं. इट्स वेरी सिंपल. तो डोनर को कोई तकलीफ नहीं होती. इट्स नॉट लाइक डोनेटिंग किडनी. इट्स वेरी सिंपल. Yeah, the transplant process is not that simple. It's a complicated process. It requires a lot of expertise and very good care, a teamwork. But donor ko koi hazard nahi hota. Donor ke health ko koi problem nahi hota. Jo hum stem cells banate hain, it is replenished very soon. Unki body wapas bana leti hai. So anybody can donate.
1: To abhi tak cancer ke bare mein humne kafi baatcheet ki, ma'am. To एक कैंसर पेशेंट आप ट्रीट कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है, फिर उनका फॉलोअप करना कितना जरूरी है, वो कितना इम्पोर्टेंट है?
0: इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बिकॉज जैसा कि मैंने बताया, बच्चों के कैंसर में 80% से 90% कैंसर ठीक हो जाते हैं. सो नाउ यू नो आवर फोकस इज नॉट जस्ट टू क्योर द कैंसर, बट टू गिव देम अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ.
1: करेक्ट,
0: है ना. और हमने बात की कि कीमोथेरेपीज के टॉक्सिसिटीज हो सकते हैं, थोड़े बहुत लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटीज भी हो सकते हैं, है ना. और इट्स अ ग्रोइंग चाइल्ड. तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कैंसर, डॉक्टर्स उनको फॉलोअप का डेट देते हैं. और ऐसा नहीं है कि कैंसर का मेरा ट्रीटमेंट खत्म हो गया, आई एम क्योर्ड, सो आई कैन, आई मीन आई नीड नॉट फॉलोअप. कुछ पेरेंट्स बहुत लाइटली लेते हैं, तो वो कभी नहीं करना चाहिए. बिकॉज क्वालिटी ऑफ लाइफ, वी हैव टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड हैज गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिकॉज आगे उनकी 50-60-70 ईयर्स की लाइफ बची हुई है. तो उसके लिए कुछ सेंटर्स पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थेरेपी ACT क्लिनिक बोलते हैं. वो सिर्फ उन इस पर्पज के लिए होता है कि जिनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया उनका हम कैसे केयर करें.
1: अच्छा.
0: तो उसमें हम उनको पीरियोडिक इंटरवल्स पे बुलाते हैं, उनकी ग्रोथ को, वेट, हाइट, बॉडी मास इंडेक्स, उनका रूटीन ब्लड टेस्ट, अगर कुछ स्कैन्स की जरूरत है तो वो स्कैन्स, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, ये सब. एंडोक्राइन, कुछ जिन बच्चों को स्पेशली ब्रेन ट्यूमर के लिए रेडिएशन मिला है, उनको कुछ एंडोक्राइन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हार्मोन इंबैलेंस. तो उसके लिए हम स्पेशलिस्ट के पास उनको रेफर करते हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास, जो कि उनका ग्रोथ, हाइट स्पेशली, ताकि बच्चे शॉर्ट स्टेचर नहीं हो. सो इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं. सो कुछ कीमोथेरेपी एजेंट्स होते हैं जो कार्डियोटॉक्सिक होते हैं, हार्ट में नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए हम पीरियोडिक इंटरवल पे उनका हार्ट का स्कैन करना पड़ता है. इसी तरह कुछ कैंसर्स होते हैं जिनके वापस आने के चांसेस होते हैं, तो जहां पे वो ट्यूमर था उस साइड पे हम स्कैन करते हैं या पेट स्कैन करते हैं. तो फॉलो अप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड टू डिटेक्ट रिलैप्स एट द अर्लीएस्ट. क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, कैंसर वापस आने के बाद भी उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है.
1: तो ये फॉलोअप भी हम कितने दिन तक लेना चाहिए?
0: कुछ कैंसर्स में लाइफ लॉन्ग भी करना पड़ता है, बट एटलीस्ट 5 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट, दिस इज मिनिमम. बट क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है. जैसे इनिशियली अभी जस्ट ट्रीटमेंट खत्म हुआ है, तो अभी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैंसर, कुछ कैंसर्स में हम उनको मंथली बुलाते हैं फॉर एवरी 6 months. आफ्टर दैट वी कॉल देम वंस इन 6 months, देन मे बी वील कॉल देम वंस इन अ ईयर. सो डिपेंड्स,
1: फ्रीक्वेंसी
0: कम होती जाती है, लेकिन उनको फॉलोअप में रहना पड़ता है. बट इसका मतलब ये नहीं हो कि उसके साथ एक स्टिग्मा एसोसिएटेड हो कि यू नो वी हैव सीन दैट इट्स वेरी पेनफुल दैट आफ्टर दे हैव कंप्लीटेड देयर ट्रीटमेंट दे आर कंप्लीटली नॉर्मल, बट दे आर नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी. नो देयर इज लॉट ऑफ स्टिग्मा कि ये तो कैंसर, स्पेशली फीमेल्स में हमारे पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं कि इसकी शादी नहीं होगी. व्हाट जब कैंसर डायग्नोस होता है, स्पेशली फॉर फीमेल, इट्स यू नो इट्स वेरी पेनफुल दैट दे से कि व्हाट इज द पॉइंट इन ट्रीटिंग अ फीमेल चाइल्ड, इसके बाद नोबडी इज गोइंग टू मैरी हर. सो दे शुड बी एक्सेप्टेड बैक इन द सोसाइटी आफ्टर ट्रीटमेंट विदाउट एनी स्टिग्मा, लाइक एनी अदर नॉर्मल चाइल्ड. Just because they are following up doesn't mean they are still suffering or they have some defect. No. It's just a protocol.
1: Correct.

0: KLE Society's Dr. Prabhakar Kore Super Speciality Hospital. Cure for all health-related problems. Experienced doctors and ultra-modern facilities ke saath. KLE Society's Dr. Prabhakar Kore Super Speciality Hospital and Medical Research Center. Nehru Nagar, Pelagavi. Call 08312473777.
1: मैम अभी जो ये मंथ चल रहा है चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस मंथ जो कि सितंबर में सेलिब्रेट होता है, इसी के चलते आपके डिपार्टमेंट से क्या क्या प्रोग्राम चलते हैं?
2: ओके, सो हमने कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम किए, जो मैंने अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स की बात की, तो हमने पेरेंट्स के लिए कुछ एजुकेशन प्रोग्राम्स रखे, बच्चों के लिए कुछ फन एक्टिविटीज़, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की. बट आई बिलीव मोर देन टॉकिंग इट शुड बी एक्शन. सो यू नो हमारे पास एक ब्लड कैंसर का बच्चा था जो कि बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड, द फादर इज़ अ डेली वेज वर्कर एंड बोथ द पेरेंट्स आर इलिटरेट. तो सिक्स मंथ्स पहले उसका AML डायग्नोस हुआ था, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, एक तरह का ब्लड कैंसर है. तो वो बच्चा कीमो रिफ्रैक्ट्री था, मतलब कीमोथेरेपी देने के बाद भी ही वॉज नॉट MRD नेगेटिव. तो उस केस में ट्रांसप्लांट वॉज द ओनली ट्रीटमेंट ऑप्शन, सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट. सो जब पेरेंट्स हमारे पास आए थे, दे हैड कम इन अ वेरी डिफिकल्ट स्टेज. They had come to us, they didn't have even 5,000 rupees. So we decided that this is a special month and we have to do the transplant of this child. So humne hospital administration ki help li and they were kind enough to help that child. And bahut sare NGOs, they came forward. I would like to mention their names, like Can Kids, Ekam Foundation, Cancer Patients Association. I'm sorry if I'm missing some names. Hamare local NGOs, jaise ki hamare Inner Wheel Club, we got some minority funds also, some politicians also came forward to help. Aur in सबकी मदद से स्पेशली द मेन रोल वॉज प्लेड बाई द हॉस्पिटल, बिकॉज जब तक हॉस्पिटल की परमिशन नहीं हो तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते. एंड ऑलमोस्ट जस्ट विथ ऑल दीज हेल्प्स, एक एलोजेनिक ट्रांसप्लांट करने का मिनिमम बजट 15-20 lakhs का होता है. सो अ चाइल्ड हुज फादर इज अ डेली वेज वर्कर हु इज इलिटरेट, हमने उसका ट्रांसप्लांट किया एंड बाई गॉड्स ग्रेस इट वॉज सक्सेसफुल एंड बच्चा अभी घर पे है. ही इज इन अ गुड कंडीशन, 1 month पोस्ट ट्रांसप्लांट, पोस्ट डिस्चार्ज इज डूइंग वेल. सो दिस वॉज अ initiative taken by our hospital to help a poor child. ऐसे ही हमारे पास अभी एक stage 4 neuroblastoma का patient आया जिसके father नहीं है. So we gave chemotherapy free of cost to the child और उसके transplants के लिए भी हम funds raise कर रहे हैं.
1: अच्छा, तो केली संपत कुमार शिवंगी कैंसर हॉस्पिटल जो है हमारा, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है अभी कैंसर को लेके?
2: ओके, सो जितनी भी इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए यहाँ पे सब कुछ है. तो हम बात कर रहे हैं पीडियाट्रिक कैंसर की, तो वी हैव अ वेरी गुड टीम. सो देर आर 2 पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट, माइसेल्फ डॉक्टर अभिलाषा एंड डॉक्टर निरंजन. देन वी हैव अ वेरी गुड टीम ऑफ ट्रेंड नर्सेज हु आर ट्रेन फ्रॉम सेंटर्स लाइक टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड एम्स, जो कि हमने 2017 में अपना कैंसर पीडियाट्रिक कैंसर केयर स्टार्ट किया था यहाँ पे, तो अभी 10 साल हो गए. सो ऑल दोज नर्सेज आर वेरी वेल ट्रेंड विद 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. वी हैव ट्रेंड ऑन्को फार्मेसिस्ट who's again very well experienced. We have dietitians who are trained in onco nutrition. Then we have other facilities like hospital ke infrastructure ki agar baat kare to special isolation room aapko jaisa chahiye hota hai, chemotherapy reconstitution unit, cancer ka jaisa special ward, to ye sab facilities hain. I mean these are the basic things. Apart from that we have state of art transplant facilities, we have a specialized BMT unit aur NGO support, most important, because cancer में जो सबसे बड़ी toxicity होती है that is financial toxicity. क्योंकि treatment हमने commonest cancer की बात की ALL, उसका treatment around 2.5 years, 2.5 साल तक चलता है, जिसमें 6 months intensive phase होता है. तो इसके लिए financial support parents को देना बहुत जरूरी होता है. Even जो affordable होते हैं वो भी financially drained out हो जाते हैं by the end of 2.5 to 3 years, because you know we have so many parents where the father has lost the job because he has to be with the child round the clock. It's very difficult for the mother to manage alone. So KLE Cancer Hospital is the only hospital in North Karnataka which is empaneled to all the government schemes for cancer, for pediatric cancer. So we have all the government schemes, plus we have of MOU with all the national NGOs, very good NGOs. So a lot of funds come to KLE Hospital from all these NGOs. So we have 2 trained social workers provided by the NGOs who round the clock work to raise funds to help these poor children. So we don't discriminate any child based on their financial status, ki this child is coming from a very low socio-economic status, this child is well off. But having said that, ek message dena chahungi, it's very important ki bachchon ka bhi health insurance ho. रिसेंटली आई हैड अ चांस टू विजिट यूएस फॉर शॉर्ट ट्रेनिंग एकेडमिक विजिट. सो वहाँ पे मैंने देखा सब कुछ इंश्योरेंस में कवर होता है, बट हमारे कंट्री में बच्चों के इंश्योरेंस को लेके इतना अवेयरनेस नहीं है. एडल्ट्स में इंश्योरेंस होता है, तो हर एक बच्चे का, ऑल्दो गवर्नमेंट हेल्प है, स्कीम्स के थ्रू हेल्प है, एनजीओ के थ्रू हेल्प है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हेल्थ इंश्योरेंस भी हो, बिकॉज कैंसर के ट्रीटमेंट में काफी खर्चा होता है.
1: बिल्कुल.
2: और अगर कैंसर वापस आ गया, अगर ट्रांसप्लांट की जरूरत हुई, तो यू हैव टू बी फाइनेंशियली वेरी वेल ऑफ टू मेक श्योर दैट योर चाइल्ड रिसीव्स यू नो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट. तो ये फैसिलिटी होना किसी भी कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे सोशल वर्कर्स हो, फंड्स हो, एनजीओ सपोर्ट हो, गवर्नमेंट स्कीम्स हो, नॉट जस्ट अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ थिंग. और केली का जो ब्लड बैंक है दैट इज वेरी स्पेशल. वी हैव अ वेरी गुड ब्लड बैंक जहाँ पे एफेरेसिस की फैसिलिटी है, स्टेम सेल कलेक्शन होता है, और अदर स्पेशलिस्ट आर देयर. As I said, all the facilities in one roof. We have very well-trained oncosurgeons. We have very good radiation oncologists. We have interventional radiologists. We have good intensivists. So all the specialities are there under one roof. So all these facilities are available.
1: Yani KLE Sampath Kumar Shivangi Cancer Hospital jo hai wo कैंसर की तरह ही बाकी सारी जो बीमारियां हैं उनको लेके भी परिपूर्ण है अपने इसमें, यानी सभी तरह की फैसिलिटीज केले हॉस्पिटल में अवेलेबल है.
2: बिल्कुल.
1: जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था मैम आज का, जो बच्चों का कैंसर, उस पर हमने बातचीत की और काफी डिटेल में आपने सभी इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए समय दिया. सो थैंक यू सो मच.
2: थैंक यू.
1: अभी तक हमने डॉक्टर का रोल जान लिया, पेरेंट्स का रोल जान लिया कि कैंसर अगर कैंसर अगर होता है किसी बच्चे को तो क्या करना चाहिए पेरेंट्स को. सोसाइटी का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो उनका रोल क्या रहता है इसमें?
2: सोसाइटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है. जैसे कि इन बच्चों को बहुत ज्यादा ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है, ब्लड प्लेटलेट्स एक्सेट्रा. सो उनको ब्लड डोनेट करना चाहिए. जैसा कि मैंने बताया कि स्टेम सेल डोनेट करने से भी कुछ नहीं होता, सो ब्लड डोनेट करने से भी कुछ नुकसान नहीं होता. तो जब भी इमरजेंसी में इन बच्चों को ब्लड की जरूरत पड़े तो आगे दे शुड कम फॉरवर्ड एंड डोनेट ब्लड, या ब्लड बैंक में जाके ब्लड देना चाहिए. उसके बाद लोकल चैरिटी ग्रुप्स या पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स ऐसा फॉर्म करना चाहिए उनको, जिसमें कि वो चैरिटी कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प ही इंपॉर्टेंट है, इमोशनल हेल्प इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एज आई टोल्ड कि जब किसी बच्चे का कैंसर डायग्नोस होता है तो फैमिली पूरी तरह से दे गेट इमोशनली ओवरवेल्ड, वो बहुत सफर करते हैं इमोशनली भी. तो उनको ये सपोर्ट देना कि वी आर विथ यू, यू आर नॉट अलोन. जैसे कि सपोज वी हैव सो मेनी चिल्ड्रन हु आर ऑर्फन्स, और मदर अकेले मैने सिंगल पेरेंट, तो उस केस में उनको सपोर्ट देना, क्योंकि उस टाइम पे बहुत हेल्प की जरूरत होती है, कोई जाके कोई बार बार ब्लड बैंक जा रहा है या ब्लड इन्वेस्टिगेशंस के लिए. सो उस तरह से होलिस्टिक इमोशनल सपोर्ट देना. हमने अभी अवेयरनेस की बात की पिछले आधे घंटे में, तो ये सटल साइंस एंड सिम्टम्स जिसकी हमने बात की, वो अवेयरनेस फैलाना. अगर आपके आसपास कोई बच्चा है जिसको कुछ ऐसा साइंस एंड सिम्टम्स लग रहा है तो उसे डॉक्टर के पास लेके जाना, इसके बारे में जानकारी देना. सो सोसाइटी कैन रियली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड यू नो If the society is motivated about it, you know, we can form a community for these children, where these children are diagnosed early, treated appropriately, supported financially and emotionally, and once they complete the treatment, they are accepted back in the society without any stigma. So that is very important.
1: Correct. इसी के साथ ये जो भी कैंसर चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, इसी के चलते आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे?
2: Okay. So as we all know, you know, children are the most precious resources on our planet, and बच्चों का कैंसर ठीक हो सकता है. It has a very good cure rate. So every child should have a fair chance to be treated, diagnosed early and treated appropriately. And उन parents को ऐसा नहीं सोचना है कि वो अकेले हैं अगर उनके बच्चों का कैंसर डायग्नोज होता है. All of us are there to support them in every possible way, in providing treatment, providing them blood products. There are so many NGOs for financial support. There are so many government schemes. So उनको ये सोच के कभी भी treatment छोड़ना नहीं है कि नहीं हो पाएगा. दे शुड नॉट लूज होप्स, दे शुड बी मोटिवेटेड. इफ दे आर मोटिवेटेड, वील मेक श्योर दैट दे कम्प्लीट ट्रीटमेंट. एंड हमारे कंट्री में द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज ट्रीटमेंट अबैंडनमेंट रेट इज वेरी हाई ड्यू टू मल्टीपल कॉजेज. वन कॉज इज लैक ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि कैंसर ठीक नहीं हो सकता, वी आर जस्ट वेस्टिंग आर मनी. तो ऐसा नहीं है, अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है तो उसको कम्प्लीट करना है. अबैंडनमेंट रेट इज एज हाई एज 20-30%, विच इज वेरी हाई, तो उसको कम करना है. कुछ पेरेंट्स थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेने के बाद दे गो फॉर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लाइक आयुर्वेदिक एंड वेरियस अदर मोडालिटीज. तो आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर कि एज फार एज कैंसर ट्रीटमेंट इज कंसर्न, हाँ उन सब मोडालिटीज से उनको थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल सकता है, बट दे कैन बी क्योर्ड ओनली विद प्रॉपर मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट विच आई मेंशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन. सो प्लीज डोंट गो फॉर एनी ऑल्टरनेटिव थेरेपी इन द मिडल, डोंट अबैंडन द ट्रीटमेंट, कंप्लीट द ट्रीटमेंट. ऑल ऑफ अस आर देयर टू हेल्प यू, सपोर्ट यू. देयर इज लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर चाइल्डहुड कैंसर, बी इट द सेंटर इटसेल्फ, be it government support, NGO support and society support.
1: Thank you so much. ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो आप केली वेणुधोनी 90.4 FM पे सुन रहे थे. डॉक्टर अभिलाषा हमारे साथ थी जो केली संपत कुमार शिवंगी कैंसर हॉस्पिटल में हेडिंग द डिवीजन ऑफ पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी है और केली जैन मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी. कैसा था आज का एपिसोड जरूर बताएगा, नंबर है 9019904904. ये है केली वेणुधोनी 90.4 FM की प्रस्तुति. नमस्कार.

0: ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಂದ್ರ ವೇಣುಧ್ವನಿ, ಇದು 90.4 FM KLE ಕನಸು. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಪೈ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವತ್ತಿನ
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसु. भाषा संगम लेकर आई हूं मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा. दोस्तों, आज भाषा संगम में आप एक अलग ही आवाज सुनने वाले हैं. एक नहीं, काफी सारी अलग अलग आवाजें सुनने वाले हैं. और भले ही ये आवाज अलग अलग है, पर इन सभी आवाज का सार एक ही है और वो है कबीर. कबीर ये नाम हम हिंदी किताबों से जानते हैं. हम जैसे, यानी आप, मैं और हमारे सारे लिसनर्स जैसे आम लोग हैं, उनके लिए कबीर के दोहे यानी हिंदी के सिलेबस का हिस्सा हुआ करता था, चाहे वो स्कूल में हो या कॉलेज में हो. आज हमारे स्टूडियो में कुछ ऐसे युवा स्टूडेंट्स आए हुए हैं जिनका भी वास्ता शायद शुरू तो हिंदी किताब से ही हुआ था, पर आगे चल के उन्होंने कबीर को अपनी लाइफ में किस तरीके से अपनाया है और कबीर उनको किस तरीके से गाइड करते हैं या वो अपनी लाइफ में कबीर को कैसे रिलेट कर पाते हैं, इस अनुभव को शेयर करने के लिए हमारे साथ आज 4 स्टूडेंट्स मौजूद हैं. उनका नाम है सानवी, अरहान, हेमांग और सृष्टि. वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर शो.
2: थैंक यू.
1: मैं बताना चाहूंगी कि ये चारों और इनके साथ और 6 लोगों की टीम सब मिलके अनहद नामक एक प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं. और ये एक अपने आप में अनोखा प्रोग्राम है. न ये नाटक है, न कोई संगीत का प्रोग्राम है, पर कहने जाओ तो ये दोनों ही है. पर इसके साथ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी जिंदगी के कुछ सवालों के जवाब अपने आप ही ढूंढ लेते हैं. तो शुरू करते हैं आज का शो और सुनते हैं इन बच्चों से कि इनका अनहद क्या है और ये कबीर को अपनी लाइफ में क्या समझते हैं, क्या मानते हैं. शुरू करते हैं सानवी से. सानवी, व्हाट इज अनहद?
2: अनहद इज अ शो दैट वी डू ऑन सेंट कबीर. लाइक यू ऑलरेडी सेड, इट्स नॉट अ, व्हाट कैन वी से, इट्स नॉट अ सिंगिंग प्रोग्राम, इट इज अ ड्रामा, इट इज अ नाटक. It is a नाटक that includes everybody. Audience भी हमारे साथ include होते हैं.
1: अच्छा.
2: So we talk about Kabir, the Kabir that we have understood, and we just want to tell and sing our Kabir.
1: Okay.
2: Through a नाटक.
1: Okay. अरहान, मुझे बताइए, ये एक प्रकार का नाटक है, तो ये नाटक आप स्टेज पे हैं, ऑडियंस सामने बैठी है, या किस तरीके से आप ऑडियंस को कैसे इंक्लूड करते हैं इस प्रोग्राम में?
3: ये जो बेसिक कमर्शियल नाटक होता है कि ऑडियंस आगे बैठेगी और जो परफॉर्मर्स रहेंगे वो स्टेज पे, दिस इज नॉट लाइक दैट. द ऑडियंस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द नाटक दैट वी आर डूइंग. व्हेन वी सिंग कबीर, इट्स अलॉन्ग विद द ऑडियंस. ऑडियंस इज सिंगिंग विद अस. वी शेयर अबाउट आर एक्सपीरियंसेस, दैट हाउ वी रिलेट टू कबीर, एंड इट इज अ वन ऑन वन डिस्कशन विद द ऑडियंस, एंड दैट इज व्हाट इट मेक्स.
1: ओके. तो इस शो का फॉर्मेट तो हमें समझ में आ गया. अब इस शो की स्क्रिप्ट लिखी किसने है और किस तरीके से इस शो ने रूप लिया, मुझे बताएंगे हेमंग
4: जी? सो स्क्रिप्ट पर से नहीं है, इट इज ऑल फ्री फ्लोइंग.
1: ओके.
4: और जो स्टोरीज है वो हमारे खुद के है.
1: अच्छा.
4: प्रोग्राम का फॉर्मेट ऑफ कोर्स वैभव भैया ने लिखा हुआ है.
1: उन्होंने
4: हमें समझाया कि ऐसा क्यों है. And it is very beautifully directed. There are pauses, ठहराव है, energy है, connect है. So imagine a large group of people doing the same thing, but everyone is unknown to the other.
1: Okay.
4: This is what makes it so special. And scripted नहीं है to large extent.
1: Okay. सृष्टि, मुझे बताइए कि ये स्क्रिप्टेड नहीं है, फ्री फ्लोइंग है, जिसे हम मराठी में मुक्त छंद भी कहते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस कैसे करते हैं? और आपको, मतलब, एक हमारे दिमाग में रहता है ना कि अभी मैं ये कहूँगा, फिर ये वो कहेगी, फिर हम ये प्रॉप उठाएंगे, ये एक्शन करेंगे. हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू एक्चुअली डोंट नो कि अब क्या होने वाला है?
5: As Hemang said, वो स्क्रिप्टेड नहीं है, पर बिकॉज हम हमारे किस्से बता रहे हैं, उसके लिए ना तो प्रैक्टिस की जरूरत है ना ही प्रिपरेशन की. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है. देयर इज अ फॉर्मेट टू द शो विच इज प्री डिसाइडेड, बट सिंस वी आर शेयरिंग आर ओन स्टोरीज, इट डजंट लुक स्क्रिप्टेड, बट इट इज फॉर्मेटेड.
1: ओके. तो जैसे हेमांग ने नाम लिया वैभव भैया का, जो इस शो के डायरेक्टर है वैभव लोकुर, आप इस शो में अपने अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं और फ्री फ्लोइंग शो है, थोड़ा अलग सा शो है जहां पर ऑडियंस भी पार्टिसिपेट करती है, तो मैं जानना चाहूंगी कि इसमें वैभव ने आपके किस तरह की मदद की?
5: जब शुरू हुआ था, इसकी तालीम जब शुरू हुई थी, तब किसी को पता नहीं था कि इसका फॉर्मेट कैसे होगा. एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे कि प्रोसेनियम फॉर्मेट होगा, और हम एक जगह बैठेंगे और ऑडियंस सामने बैठेगी और हम गाएंगे या बताएंगे कुछ बात करेंगे. पर जब प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस में सब बिल्ड हुआ है, इवॉल्व हुआ है, चाहे वो गाने हो, चाहे स्क्रिप्ट हो, चाहे कोरियोग्राफीज हो जो दिखते कोरियोग्राफ नहीं है पर है.
6: ओके.
5: इन द प्रोसेस ही हैज मेड अस लर्न इट आवरसेल्फ्स. ही हैज नॉट टॉट अस लाइक टीचर.
6: ओके.
5: टिपिकल टीचर की असा है.
1: He has given you just concepts and you have worked on and around those concepts.
3: I joined the show quite later. So about when I was performing Kabir, it needs a lot of work. I need to understand what those songs mean. Wo kya matlab hai. And breaking it down is very difficult.
6: Okay.
3: You need like, I feel that connecting it to your story was the most difficult part. And someone who has been the catalyst to do that was Vaibha.
1: Okay. Now tell me, why Kabir? Kabir hi kyun chuna? Ya phir is theme ka idea kahan se aaya? Kahin to iska janam hua hoga. So how did you find this Kabir?
4: I think Kabir is different and special for three main reasons. First being, there is a subtle hint of rebellion in what he says.
1: Okay.
4: Ki paathar puje hari mile to main puju pahad, taate ye chaki bhali peace khaye sansar. अगर पत्थर को पूजने से भगवान की प्राप्ति होती है तो मैं पहाड़ ही पूज लेता हूँ, बड़ा भगवान मिल जाएगा. बट ऐसा नहीं है, ये चक्की भली है जिसमें पीस के पूरा संसार का पेट भर जाता है. सो देयर इज वन सटल हिंट ऑफ रेबेलियन व्हिच आई ऑनेस्टली लाइक बिकॉज आई रिलेट अ लॉट टू इट.
1: ओके.
4: बॉर्न लेफ्ट हैंडेड सो बहुत although my family did support me being left-handed. हाँ, मतलब कभी कभी ऐसा डांट खाया है कि लेफ्ट हाथ से नहीं करते, प्रसाद नहीं लेते, खाना नहीं खाते, and all of that. But I didn't, of course, go into all of that. And that is why I relate to Kabir.
1: Okay.
4: Also, the second reason being, he also talks about surrender. जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले. I can't oppose the very nature and net of life. मैं कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए जितना मेरे हाथ में है. But I can't oppose it.
1: Yes.
4: That is what makes Kabir so special.
1: आपने तो अपना रीजन बता दिया कबीर क्यों. कोई और शेयर करना चाहता है कबीर क्यों?
5: मेरे लिए कबीर क्यों, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन विल बी, कबीर सबके लिए अलग है. शायद जो कबीर सानवी को समझा है और जो मुझे समझा है वह बहुत अलग है. इसके पहले जो भी गाने मैंने सीखे हैं उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग परिभाषा नहीं होती थी. बट कबीर ने मुझे वो स्पेस दिया है कि मेरा कबीर शायद सबसे अलग है.
1: ओके.
5: मुझे जो समझा है वो कबीर अलग है. एंड दैट्स व्हाई कबीर.
1: ओके. सो आपकी लाइफ में कबीर कैसे आए और क्या वो ऐसी चीज़ थी या कौन सा ऐसा दोहा था जो जिसने आपकी लाइफ को पकड़ लिया या आपने कबीर को पकड़ लिया अपनी लाइफ में? सो व्हाट वाज दैट, प्लीज शेयर.
2: हाउ कबीर केम इनटू आवर लाइफ्स वाज की स्कूल के बुक्स में दोहे थे, बट आफ्टर दैट देयर वाज नो कनेक्ट. कबीर के बारे में हमने उसके बाद कुछ नहीं पढ़ा आफ्टर स्कूल एंडेड. आफ्टर दैट, आफ्टर अ ईयर व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर, मुझे मेरे और एक फ्रेंड ने, तन्मय ने, ऐसा बताया कि वैभव दादा इज डूइंग अ शो, सो वुड यू लाइक टू वॉलंटियर. एंड आई वॉन्टेड टू वॉलंटियर, आई डिडंट इवन नो व्हाट द शो वॉज अबाउट.
1: ओके.
2: सो आई टेक्स्टेड हिम एंड देन ही सेड कि ये मीटिंग ला, एंड वी मेट, एंड दैट्स व्हेन ही टोल्ड अस दैट वी हैड टू सिंग. हम में से कोई नहीं गाता है.
1: ओके.
2: सिर्फ सृष्टि गाती है. वी ऑल प्रोटेस्टेड कि हमें गाना आता ही नहीं है, हम गा ही नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता. व्हाट कबीर हैज डन टू मी इज, नाउ इट्स बीन अ ईयर दैट वी आर सिंगिंग कबीर, एंड समवेयर आई हैव फेल्ट कि एनीबडी कैन सिंग कबीर.
1: यस.
2: कबीर बिकेम रेलेवेंट इन दैट वे ऑल्सो. समथिंग दैट आई थॉट दैट आई कुड नेवर डू, I'm actually doing it for every show. I'm singing for every show. Later, Vaibhav Dada told us that hame research karna hai. We have to bring information about Kabir and discuss it every day.
1: Mm.
2: That's how Kabir actually came back into my life, I would say.
1: Okay.
2: Ki school ki kitabon ke baad directly after a gap of a year, Kabir came into our lives because of Vaibhav Dada. To answer your previous question, what is his contribution?
3: For me, it was very funny for me that how I got into Kabir. I knew Kabir. I had read about it in school's textbooks. But then when these people were doing their first show, the first show happened on 2nd of August. And Srishti happens to be my best friend. So then she was like, tujhe mere show ko aana hi padega. Tu nahi aayega to dekh. So then that's when, for the first time, I came to the show. And when I experienced Anhad, it stayed with me. I went back home and then it stayed with me. I wrote a review on how Anhad was. And after 6 months, I guess, Srishti asked me that, do you want to do Anhad? I said, mujhe gana to aata nahi hai, but still I will be doing it.
1: Okay.
3: I don't know why. And yeah, that's what I started. Then I started coming to the rehearsals. And I started researching about Kabir a lot. And I feel that is when it got more relevant to me. Because when I started reading that, it was far more vast. I came to know about the following. I came to know about the Kabirpanthis. And that's when I felt that agar itne sare log follow kar rahe, then there is definitely something about
1: it.
3: And then after that, I started finding the meaning of the songs. In the initial stage, obviously, ChatGPT, Google. But then I was told that, no, you have to find your own meaning.
1: Right.
3: The hunt started. And then after that, a few days, when we performed Kabir by the second show, everyone had a different meaning and yet we were on the same page and we used to perform. And I think that is what snapped everything. And then after that, Kabir has stayed with me forever.
1: Okay. What about you?
2: Arhan said ki first he came as audience and now he is performing. I would say that is the magic of Anhad.
1: True.
4: So, mere liye bhi, of course, school se hi shuru hua. Chauthi, paanchvi kaksha mein ratna hi tha. But I started to relate to Kabir really in 8th, 9th grade, COVID ke baad.
1: Okay.
4: When I started to understand ki jitna bhi main oppose kar lu, jo mere haath mein nahi hai, wo nahi hai. Aur there is the second part ki Kabir is also an agnostic believer of God. Ki Bhagwan hai, but murtiyon mein to pakka nahi hai.
1: Okay.
4: And that's that is why I relate to him so much, because even I don't really think ki murti mein dhoondne se bhagwan milega ya mandir jaane se bhagwan milega.
1: So maybe Kabir taught you to find divinity in your life and people around you, your day to day life and people around you. That is more practical way, I guess. And that is why maybe Kabir is still relatable. इतने सालों पहले जो कबीर ने कहा था वो आज भी हमको सही लगता है, क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी और अपनी कहानी में उसने डिविनिटी को ढूंढना सिखाया. What about you? Tell me.
5: जब मैंने स्कूल के टेक्स्ट बुक में कबीर पढ़ा था तब मुझे वो एक रीजन के लिए पसंद था, क्योंकि बाय हार्ट करने में बहुत ईजी था. कुछ डिफिकल्ट नहीं था समझने में, बहुत इजी थे दोहे उसके. बट आई वाज वेरी अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट पीपल सिंग कबीर टू. एंड व्हेन आई हैपेंड टू जॉइन अनहद एंड आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड ऑफ कबीर, आई गॉट टू नो दैट इट इज फार ह्यूज देन आई हैड इमेजिनड इट टू बी. एंड इनिशियली इन द फ्यू डेज व्हेन वी वर रिसर्चिंग, लाइक सैंडी सेड, आई केम अक्रॉस वन दोहा, वन सॉन्ग, भजन, निर्भय निर्गुण गुणरे गाऊंगा. दैट वॉज द पॉइंट वेर आई थिंक आई सरेंडर्ड. आई स्टिल डोंट नो वाई, स्टिल फाइंडिंग. एंड मे बी लाइक आई सेड, कबीर इज डिफरेंट फॉर एवरीबडी एंड नाउ वी आर ऑन द पाथ टू फाइंड न्यू मीनिंग्स इन द सेम सॉन्ग्स.
1: ओके.
5: फॉर आर सेल्व्स, नॉट फॉर द टीम, फॉर आर सेल्व्स. एंड दैट इज वाई.
1: ओके. Now, you have been doing Anhad since more than 1 year now, right? So, apne jitne bhi shows kiye, aapka show bilkul alag tha. Show ka topic jo hai, Kabir, ye bhi bahut alag hai. Yani, kabhi kisi ne socha nahi tha, nahi hoga ki ek natya roop mein Kabir ko laya jayega aur aisa natya jahan par audience bhi participate karti hai. To, audience ka response kaisa raha? Jab aapne, matlab pehle stage and audience aise hi show kiya tha ya pehle se hi audience involved thi ya audience ka response dekh ke aapne audience ko involve kiya? How was it?
3: When as I was the audience and then I joined, when I stepped into the space where Kabir was going to happen, I asked Sanvi and Tanmay and Srishti ki, maine baithna kaha hai, tum log kaha perform kar rahe ho? And then they were like, tu kidhar bhi baith. And that is when I did not really understand that what exactly the concept was. Mm. But then when the whole performance happened, that time it all made sense. Mm. And the whole beauty of Anhad is that when you are alone, Kabir is for everyone. Mm. And that is what is being, and that is why we don't make the audience and the performers gap. And I think the audience has had a very beautiful response to it.
1: Means you sit amongst the audience and you perform.
3: Yes.
1: Okay. And do the audience join you in the songs and dohas?
3: Yeah, they do.
1: और फिर आप जैसे अपने अनुभव बताते हैं और कबीर गाते हैं तो ऑडियंस कभी शेयर करती है अपना अनुभव कबीर के बारे में व्हेन यू आर परफॉर्मिंग और ड्यूरिंग योर परफॉर्मेंस एनीबडी आके खुद वॉलंटियर करके बताता है कुछ कबीर के बारे में या कोई अनुभव शेयर करता है
2: कबीर के बारे में अनुभव नहीं शेयर किए किसी ने बट शो के बारे में किए हैं आफ्टर द शो व्हाट दे हैव फेल्ट इफ एनीबडी वांट्स टू शेयर
5: जैसे कि आपने पूछा था कि पहले से ही ये फॉर्मेट है कि आपने देख के किया था तो पहले से ही ये फॉर्मेट था कि ऑडियंस के साथ ही बैठ के परफॉर्म करना है इनिशियली मुझे भी नहीं पता था कि ये कैसे होने वाला है हमने तालीम की थी बहुत पहले कि अज्यूमिंग ऐसे ऐसे होगा शो के दौरान इधर ऑडियंस बैठेगा आपको ये करना है पर पहले शो तक ये पता नहीं था कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है हमें परफॉर्म एग्जैक्टली कैसे करना है और पहला जब शो हुआ 2 अगस्त 2024 को तो तभी पता चला कि ये क्यों हुआ था ये क्यों था इसके पीछे का कारण क्या था और ऑडियंस का रिस्पॉन्स इज बीन वे मोर देन वी हैड एक्सपेक्टेड एंड दे फील वेलकमिंग एंड द फैक्ट दैट दे कम टू ईच वन ऑफ अस एंड से चांगलं झालं हां अँड मे बी दॅट इज वॉट अनहद गिव्स टू देम द एनर्जी ऑफ वेलकमिंग द फॅक्ट दॅट दे कम अँड टॉक टू इच वन ऑफ अस दे फील लाईक टॉकिंग टू अस आय थिंक दॅट इज वॉट
1: ओके कबीर हर एक इंसान को अंतर्मुख होने पर मजबूर करता है इज वॉट आई फील दॅट इज वॉट कबीर इज फॉर मी तो कबीर की कौन सी बात ने आप लोगों को अंतर्मुख होने पर प्रेरित किया था वॉट मतलब क्या ऐसी चीज़ थी जो सोचने पर आज मजबूर हो गए कि नहीं कबीर की बात तो सही है मेरे लिए कबीर इज़ माय फ्रेंड माय कंपेनियन जिसके साथ हम कोई भी बात शेयर कर सकते हैं या कोई कान पकड़ के बोलेगा कि ये ऐसा नहीं ऐसा करो दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप आई शेयर विद कबीर सो व्हाट डू यू थिंक
3: फॉर मी व्हेन आई टॉक अबाउट कबीर और इन जनरल व्हेन आई टॉक व्हेनेवर समथिंग डिफरेंट इज हैपनिंग टू यू और लाइक समथिंग यू आर गोइंग थ्रू समथिंग दैट्स व्हेन यू नीड टू गो बैक टू योर फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स And I feel that Kabir is someone who reminds me of those. Like when he says, "Akhir ye tan kha ka milega," that is when I feel grounded. When he says, "Bhajore bhaiya Ram Govind Hari, Ram naam ko sumiran kar lo, sir pe maut khadi." We know that Ram naam ko yaad karna is very important, but we somewhere forget. And when I sing Kabir, I think it gives me a sense of realization. And every time I sing it, there is an add up to the sense of realization.
2: Good. Like Arhan said, the realization. On 5th July of last year, Bindu Malini sat in front of us and she sang Naiharva. All of us were, we had tears in our eyes. We didn't know why we were crying. But I think Kabir made me realize that maybe what I am living might be an illusion and I am really, really far from the reality. And Kabir is the path to get to that reality for me.
1: Okay.
5: What Kabir is for me is, it has changed my perspective of looking towards everything. Like before, I used to look at things at a very surface level. And now, even maybe, I've not touched the core, maybe. I'm on the path of touching the core. But I might not even. But I've just started. And maybe it feels very easy through this path than any other path for me.
1: True.
5: That's right.
1: Okay.
4: To me, Kabir seems very inspiring, for lack of better words, because he basically tried to do something no one of his time would. That is, he tried to question things. मुझे नहीं लगता किसी और ने to that extent try किया होगा कि बोल दिया ना मंदिर में ना मस्जिद में भगवान नहीं है. Where do you find him? इतना हम लोग ढूंढ रहे हैं. Where do you find him? He says, "Main toh hu vishwas mein." That to me seems very inspiring.
1: बात तो सही है ना. विश्वास है तो ही है. फिर वो मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी जगह हो या अपना मन हो. So आप एक एक दोहा शेयर करना चाहेंगे कबीर का अपना फेवरेट?
2: ओके, कबीर का एक भजन है घट घट में पंछी बोलता है, उसकी सबसे फेवरेट लाइंस मेरी यही है कि सब में सब बन आप बिराजे, जड़ चेतन में डोलता है, घट घट में पंछी बोलता है। तो लाइक हेमांग जस्ट सेड कि मंदिर में नहीं है भगवान, ना ही मस्जिद में है, फिर कहाँ है। मे बी दैट एनर्जी इट एग्जिस्ट एवरीवेयर इन यू, इन मी, इन ऑल ऑफ अस।
1: व्हाट अबाउट यू?
3: This doha has been like very special to me since I was a very young child. And when I came back to Anhad, like I got to, main usse wapas rubaru hua. This my grandfather used to tell me a lot, that is mati kahe kumbhar se tu ka gondhat moye, ek din aisa aayega ki main gondhungi tujhe. So this is what like he has always been teaching me about the fragility of life.
1: Yes.
3: But then I realized this after years. I may not have had realized it if I wouldn't have come to Anhad. But then I'm very grateful that I did.
5: It's very difficult to choose one. But whatever is coming to my mind, I'm going to take that.
1: Okay.
5: There's one stanza in Neharva where he says, Bina Satguru apna nahi koi, jo yaha raah dikhave, kahat kabira suno bhai sadho, sapne nu pritam aave. I have nothing to explain about this. This is just my
1: self-explanatory.
5: Yeah.
1: Okay. Tell me, what about you?
4: Again, I think my idea rounds back to two, I would say, favorites. Zara halke gaadi haako, mere Ram gaadi wale. And na mandir mein, na masjid mein, main toh hoon vishwas mein. That is, I think that's my favorite.
1: ओके आप ये जो अनहद प्रोग्राम करते हैं ऑडियंस के साथ, कबीर के साथ, तो हर एक का एक अलग अनुभव होगा। एवरी टाइम यू परफॉर्म कबीर यू फील समथिंग डिफरेंट, यू एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट, तो कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप?
4: वाइल बैक हमने किसी के श्राद्ध के बाद ऑन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट एक शो किया था एंड वी डिडंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द
1: ऑडियंस, यस,
4: because whatever mindset they were coming out of, surprisingly unhone bahut acche se participate kiya. They were very open about talking to us, kyunki bahut sare log the jinhe hum pehchante nahi the. Given the occasion, ye aisa nahi lag raha tha ki wo gana sunne ke liye aaye hain, but they participated really well. I must say that it was one of my favorite audiences that day.
1: Okay.
4: The second was when we did it in a temple couple of days back, Savantwadi mein ek jagah hai, Pritish ke ghar pe. So udhar wo log to pakka gaane nahi sunne aaye the, wo log floating crowd tha, mandir ja rahe the, prasad leke wapas nikal rahe the. We tried so hard to keep the audience. Starting mein hame 10-15 minute lage just to grab the audience's attention. But once that happened, once we started with our songs, we had the audience till the end of 70 minutes.
1: Okay.
4: And that was honestly unexpected from my end. Kyunki logon ka humse koi lena dena nahi tha.
1: Ji.
4: Na wo paise deke show dekhne aaye the, na hi unhe pata tha ki wahan pe show ho raha hai. Ekadashi thi us din, to bhajan chal hi rahe the pure din mandir mein. Out of them, ek
1: किसी को बुलाए बिना या बताए बिना जब भी आप परफॉर्म कर रहे हो, फिर भी लोग पूरा रुक के पूरा शो देख के एंजॉय करके जा रहे हैं, कुछ समझ के सीख के जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप सबकी मेहनत और कबीर की कृपा कह सकते हैं। ओके, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस टू शेयर?
5: ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं जब शो के बाद few people come and hug us, they even cry, and that is very overwhelming for us as a performer while we are performing, not expecting any of this, but still they feel like that and they come and hug us and they even cry sometimes.
1: Okay.
5: One of the things I would like to quote is, recently in June we had done a show, first show in a house, and after that one lady came to me, but she said, there's a piece where I hum in the show. She said, when you hum, I get transported to another world.
1: Okay.
5: And that has stayed with me since that day. So that is very nice to hear.
1: That thing you said about people cry. What I feel is when people cry when they are touched, right? हम दुख में नहीं रोते, हम सुख में नहीं रोते, ये दुख सुख हम

0: given state because I'm not that person. I'm not a people person.
1: ओके
0: I got here and then my papa said कि लोगों से जाके बात करना है. That was my I sweat.
1: डिफिकल्ट टास्क.
0: Yeah, difficult task.
1: ओके
0: But over the course of 5 months, अभी I feel very confident in going and talking to people. ये लोग मुझे बोलते हैं कि बहुत बकबक करता है तू ऑडियंस के साथ. I don't know how much of it do I actually mean or it just happens over time.
1: ओके
0: Yeah.
1: हेमांग इज समबडी हु इंटरैक्ट्स विद द ऑडियंस द
2: लॉट.
1: मोस्ट हम
2: सो
1: में
2: दैट इज
1: से.
2: व्हाट कबीर हैज गिवन हिम नाउ.
1: टोटली. अंटिल व्हाट कैन आई से, आई वाज इन फर्स्ट ईयर, मुझे ना ही गाने सुनना पसंद था ना ही गाना. आता नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट मुझे गाने ही पसंद नहीं थे इन जनरल. नाउ व्हेन आई लुक एट इट, व्हेन आई गो फॉर एवरी रिहर्सल, एवरी शो अनहद, इट फील्स लाइक आई एम एडिक्टेड. आई वॉन्ट टू सिंग, आई वॉन्ट पीपल टू सिंग, आई वॉन्ट टू लिसन टू वॉट वी सिंग. आई थिंक दैट इज हाउ आई हैव इवॉल्व्ड.
2: ओके
3: फॉर मी इन द स्टार्ट व्हेन आई हैड कम, आई वाज वेरी इनसिक्योर अबाउट माय वॉइस, वेरी मच. आई जस्ट कुडंट ओपन माय माउथ एंड सिंग.
2: ओके बट लेट मी गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट, यू हैव वेरी गुड बेस इन योर वॉइस. रियली ही नोज दैट. ओके कंटिन्यू.
3: एज ही नोज दैट. He was the one who gave me, who told me how I was supposed to deliver my voice and how important it was that I sing. And today, when I used to sit to sing, I used to be scared ki ye baju wale mera, they might say something about my voice. Now I sit in front of like crazy people, like crazy amount of people, and I sing and I don't mind singing loud.
2: Okay.
3: And I have started enjoying singing. I think that has brought sea blue of change in me. That is what given me. And the confidence to talk to people, as Hemang said, even the people who are close to me, I was very scared to talk. I was more scared to talk to the people who were scared to me. I think I have not yet reached there, but I think communication is something that has come to my life after doing the beer.
4: Good. For me, it is not about singing and performing, about my voice, but it has been about, there is something more in the silences is what I've learned. There is something more in something that stays after the song or after the show. That is what I have learned, and how I have transformed personally is that people around me have seen that transformation more than me. Before I realized, they have told me that you have started listening more to yourself and to people. So that is what has changed.
2: Okay. It was very nice talking to you guys, and I'm sure हमारे audience को भी आपकी बातें बहुत पसंद आई होगी. काफ़ी अलग तरीके की बातें हुई है आज के शो में. तो मैं अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आज का शो आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा. हमारे साथ थे सानवी, अरहान, हिमांग और सृष्टि, और इनके काफ़ी और साथी जो यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद है. अब सब मिलके कबीर के कुछ गाने, कुछ भजन, कुछ दोहे परफॉर्म करेंगे जो हम अगले एपिसोड में सुनेंगे. आप सुन रहे थे KLE वेणुध्वनि 90.4 FM. मैं आपकी होस्ट और दोस्त आरजेश्वरा आप सभी से विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि इस कबीर के अगले एपिसोड में आप कुछ प्यारी प्यारी आवाजों को सुनने वाले हैं और उनके साथ गुनगुनाने भी वाले हैं. जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अपनी ऑनलाइन जिंदगी से थोड़ा सा ऑफलाइन वक्त निकालिए, और हम सभी के जीवन में जो कबीर है उसका अस्तित्व सिर्फ किताबों में नहीं है, उसका अस्तित्व हमारे जीवन में है, बस ढूंढने की जरूरत है. तो वो कोशिश जरूर कीजिएगा. बाय बाय एंड टेक केयर. सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM.
5: KLE ವಿಶ್ವನಾಥ ಕತ್ತಿದಂತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯ. ಹಲ್ಲುಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಹಲ್ಲು ಕೀಳುವುದು, ಹುಳುಕ ಹಲ್ಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ವಕ್ರದಂತ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ, ಮುಖ ಬಾಯಿ ಹಲ್ಲು ಕುತ್ತಿಗೆಗಳ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಸೀಳು ತುಟಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಹಳದಿಯಾದ ಹಲ್ಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಕೃತಕ ಹಲ್ಲುಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ವಸಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ರಹದಾರಿ. ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ KLE ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕತ್ತಿದಂತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, KLE ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ನೆಹರು ನಗರ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08312470362, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9448998

एंड नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। लगता है आज सभी एकदम हैप्पी मूड में हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि मौसम भी वैसे ही हो रहा है, तेज हवाएं, और साथ ही आपने ट्यून कर लिया है हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनु ध्वनी 90.4 KLE करसु, जो कि बेलगम का सबसे बड़ा और सबसे पहला रेडियो स्टेशन भी है। और मैं हूँ, जैसा आप जानते हैं, आप सभी का प्यारा दुलारा और हैंडसम हंक रेडियो दोस्त आरजे आयुष। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल बहुत लोगों के साथ हो रहा है, जिसमें आपको पहले कॉल आता है, फिर मैसेज आता है, और फिर पता चलता है कि थोड़ी ही देर बाद आपके अकाउंट से कुछ पैसे या अमाउंट डिपॉजिट हो चुके हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं द डार्क वर्ल्ड ऑफ बैंक फ्रॉड्स। जब मैंने ये अपने किसी दोस्त के साथ होता हुआ देखा, तो सोचा कि इस टॉपिक पर आप लोगों से बात किया जाए और आपको थोड़ा सा वार्न और सचेत किया जाए। तो अपनी कुर्सी की पेटी हमेशा बांध कर रख लीजिए और तैयार हो जाइए आज की इस एपिसोड के लिए। साथ ही सुनाएंगे आपको कुछ जबरदस्त गाने। बने रहिए हमारे साथ हमारे शो बी रिलैक्स में ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु पर।

बैक टू योर फेवरेट शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनासू। दोस्तों आपको पता ही होगा बैंक फ्रॉड क्या है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैंक फ्रॉड एक ऐसा क्राइम या ऐसी स्कीम है जो लोगों से पैसे हड़पने में या उनकी आइडेंटिटी निकालने में सक्षम है, आपके बैंक खातों से जितना भी फाइनेंशियल अमाउंट है वो चुराने में। जैसे आम आदमी से लेकर बिजनेसमैन हर इंसान बहुत ही परेशान हो चुका है, जिससे जो हमारे सिस्टम को ऑलमोस्ट खोखला करते जा रहा है। पहले तो आपको कॉल आती है, किसी भी अननोन नंबर से आ सकती है और वो आपसे कहेंगे कि यार आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया है या इनएक्टिव हो गया है। फिर वो आपसे कहेंगे कि आपका आधार कार्ड नंबर बताइए या पैन कार्ड नंबर बताइए, और जैसे ही आप उनको अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड नंबर देते हैं, आपके अकाउंट से वो जितने चाहे उतने पैसे या अमाउंट निकाल सकते हैं। हो सकता है वो आपकी आइडेंटिटी का गलत इस्तेमाल भी करे। सेम चीज आपको मैसेज पर भी आ सकती है, आपको ईमेल पर भी आ सकती है। तो कोई ऐसी लिंक या टेक्स्ट या मैसेज या ईमेल को लिंक्स पर क्लिक ना करे, उनका रिप्लाई ना दे या उन्हें ओपन ही ना करे। और ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो आपको देश के किसी भी कोने से कॉल कर सकते हैं। इनकी लोकेशन पता लगा पाना लगभग ना के बराबर है और एक बहुत ही बड़ा टास्क है। आप घबराइए नहीं, मैं आपको इनसे बचने के लिए सारी जानकारी दूंगा इस एपिसोड में आगे, तो कहीं जाइएगा मत। सुनते रहिएगा हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनासू पर।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर और आप सुन रहे हैं वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु आरजे आयुष के साथ। मुझे पता है आप सब इस टॉपिक बैंक फ्रॉड को लेकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है क्योंकि आजकल ये बहुत ही ज्यादा फैल रहा है। दोस्तों जानते हैं बैंक फ्रॉड किस किस तरह के हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, पहला के आइडेंटिटी थेफ्ट, फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं, आपकी आइडेंटिटी चुरा सकते हैं या आपके पिन कोड चुरा सकते हैं, कोई भी सीक्रेटिव नंबर चुरा सकते हैं एंड दे कैन गेट इनटू योर अकाउंट्स क्विकली एंड देन दे कैन परफॉर्म अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस। दूसरा है फिशिंग, जो आजकल सबसे ज्यादा हो रहा है, जिसमें स्कैमर्स आपको कोई भी मैसेज या कॉल या ईमेल भेजते हैं और उनका रिवर्ट करने पर या उनकी लिंक्स पर क्लिक करने पर आपके बैंक से एक ह्यूज अमाउंट गायब हो जाता है या चोरी हो जाता है। अकाउंट टेकओवर, जिसमें स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट एक्सेस कर लेते हैं या हैकिंग के थ्रू या फिर सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू आपको ट्रिक कर लेते हैं और आपके अकाउंट को अपने अंडर ले लेते हैं। दोस्तों कुछ और भी टाइप्स है जो मैं आपको बताऊंगा, बट आफ्टर दिस सुपर हिट सॉन्ग्स, तो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए मेरे साथ वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

हेलो एंड वेलकम बैक। बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आपका ये प्यार ही हमें इतनी एनर्जी से भर देता है। और आपने ट्यून किया है वेणु ध्वनि 90.4 के एलई कनसु आरजे आयुष के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं द डार्क वर्ल्ड ऑफ बैंक फ्रॉड्स। और कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ और किस तरह के फ्रॉड आपके साथ हो सकते हैं, जिनमें एक और नाम आता है, वो है चेक फ्रॉड, जिसमें स्कैमर्स ऑल्टरनेटिव चेक्स या साइन का मिसयूज करके आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, तो सचेत रहे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स। इसमें आपके क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन से किसी भी शॉप या मॉल में पैसे विड्रॉ कर सकते हैं या उससे शॉप कर सकते हैं, तो प्लीज क्रेडिट कार्ड से भी थोड़ा सा बचिए। इनसाइडर फ्रॉड हो सकता है दोस्तों। पीपल और एम्प्लॉई ऑफ बैंक हु हैज द एक्सेस टू योर इन्फॉर्मेशन कैन मिसयूज द पोजीशन टू डू अ कमिट एंड द स्कैम, सो बी अवेयर। एटीएम स्किमिंग, इसमें स्कैमर्स कैन पुट एनी डिवाइस ऑन एटीएम मशीन टू कैप्चर कार्ड इन्फॉर्मेशन एंड पिन फ्रॉम अनसस्पेक्टिंग यूजर्स। तो दोस्तों ये कई सारे टाइप्स है फ्रॉड्स के और जो आपके साथ हो सकते हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। नाउ आई एम गोना प्ले अ सुपर हिट सॉन्ग फॉर यू। तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिएगा मेरे साथ वेणु ध्वनि 90.4 के एलई कनसु।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे शो वी रिलैक्स में। और आप सुन रहे हैं वेनू ध्वनी 90.4 KLE कनसु, हमारे शो का नाम वी रिलैक्स। दोस्तों, हमने बैंक फ्रॉड्स किस किस तरह से होते ये तो जान लिया, लेकिन इनके मुख्य कारण क्या होते मैं आपको बताता हूँ। पहला कारण है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, स्कैमर्स नए नए हथकंडे अपनाते जा रहे हैं टू डू अ फ्रॉड। साइबर लिंक एक्सप्लॉइट्स वल्नरेबिलिटीज इन ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स। लैक ऑफ अवेयरनेस ये भी कारण हो सकता है, ये सबसे ज्यादा विक्टिम इसी के होते हैं कि अगर आपको कोई मैसेज आया, अगर आप अवेयर नहीं हैं इसके बारे में और आपने किसी भी लिंक पर क्लिक किया तो आपके साथ ये फ्रॉड या आपके साथ ये स्कैम जरूर हो सकता है। वीक सिक्योरिटी मेजर्स, जिसका मतलब है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद वीक सिक्योरिटी मेजर्स, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर्स और मे बी अ पुअर एम्प्लॉय ट्रेनिंग हैज मोर रिस्क टू ब्रीच एंड फ्रॉड द अटेम्प्ट। इनसाइडर मूवमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर बैंक का कोई कर्मचारी या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का कर्मचारी या एम्प्लॉय इसमें अगर शामिल होता है तो हो सकता है आपके साथ भी ये फ्रॉड हो सके। चलिए, इट्स टाइम टू लिसन टू सम सुपर हिट सॉन्ग्स। आप कहीं जाइएगा मत, इसी स्माइल और मुस्कुराहट के साथ सुनते रहिए हमारा शो वी रिलैक्स, ओनली ऑन वेनू ध्वनि 90.4 KLE कनसु पर।

हेलो वेलकम वेलकम वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन एंड लिसनर्स ऑफ ऑल द एजेस, आप सुन रहे हैं हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनु धोनी 90.4 KLE कनसु आरजे आयुष के साथ। दोस्तों जानते हैं कि बैंक फ्रॉड्स का क्या इंपैक्ट पड़ता है आपके ऊपर या आपकी जिंदगी पर। फाइनेंशियल लॉसेस सबसे बड़ा है, जिसमें आपके पैसे या पूंजी, आपने जो आपकी लाइफ टाइम कमाई हुई पूंजी सेव करके रखी होती है, वो एक ही झटके में आपके बैंक से गायब हो जाती है। लॉस ऑफ ट्रस्ट, बैंक फ्रॉड्स के कारण पब्लिक और लोगों का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक से विश्वास खत्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन भी धीरे धीरे डैमेज होती जा रही है। कस्टमर्स की लॉयलिटी भी खत्म होती जा रही है। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, स्कैमर्स कैन फेस द क्रिमिनल चार्जेस इफ कॉट, बट इट माइट टेक वेरी वेरी वेरी लॉन्ग। इंक्रीज्ड ऑपरेशनल कॉस्ट, बैंक मस्ट इन्वेस्ट सिक्योरिटी मेजर्स एंड इन्वेस्टिगेट फ्रॉड इंसिडेंट्स लीडिंग टू हायर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कुछ प्रिवेंशन मेजर्स। तो सुनते रहिए मेरे साथ हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु पर।

दोस्तों क्या बात है, बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप सुन रहे हैं हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु, और मैं आरजे आयुष आपके साथ आपके मनोरंजन के लिए हमेशा बना हुआ हूँ। दोस्तों आप, हमने बैंक फ्रॉड को डिटेल में समझ लिया है, चलिए जानते हैं इनसे बचा कैसे जा सके, जिसके लिए आप सब बहुत ही ज्यादा उत्सुक है मुझे पता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इंतजार आपको कराया। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे इनहैंस्ड साइबर सिक्योरिटी। दोस्तों बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को कंटिन्यूअली अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स को अपडेट करते रहना चाहिए, जिससे फ्रॉड्स ना हो और कस्टमर हमेशा सेफ रह सके। कस्टमर एजुकेशन, कस्टमर्स को अवेयर करना चाहिए कि यार आपको कोई भी फोन या कोई भी ईमेल आता है तो उस पर थोड़ा भी रिस्पॉन्ड ना करे, जिससे आपके साथ कोई भी स्कैम ना हो। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, दोस्तों इसका मतलब है, ये नाम भी आपने कई बार सुना होगा, कि आपका एक बार पासकोड दर्ज करने के बाद भी आपको एक OTP आता है, जिससे सिक्योरिटी की एक और लाइन या लेयर एड हो जाती है, जिससे आप लोग सेफ रहते हैं। रेगुलर ऑडिट्स, बैंक शुड कंडक्ट पीरियडिक इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स टू आइडेंटिफाई एंड ओवर इवेंट फ्रॉड्स। आखिरी पॉइंट इसका मैं आपको बताता हूँ, वो है स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स। मतलब अगर बैंक एम्प्लॉय इसमें शामिल नहीं है तो इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ बैंक, जैसे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड एक्सेस रिस्ट्रिक्शन, जो काफी हद तक मिनिमाइज कर देगा इन सारे स्कैम्स और फ्रॉड्स को। कुछ पॉइंट्स और बताऊंगा आपको, बट आफ्टर दिस सुपर हिट सॉन्ग्स कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिएगा मेरे साथ हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु पर।

हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। वाकई में ये तो बात है, जितना प्यार आप लोगों से मिलता है उतना शायद ही कहीं और से मुझे मिलता हो। मैं आरजे आयुष आपके मनोरंजन और आपको जानकारी देने के लिए हमेशा बना हुआ हूँ और आप सुन रहे हैं आप सभी का और हम सभी का पसंदीदा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू रोज 5 से 8 बजे के बीच शाम को। दोस्तों कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ फ्रॉड प्रिवेंट के, जैसे कोलैबोरेशन विद लॉ इन्फोर्मेंट्स, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और लॉ इन्फोर्मेंट्स में साथ में कॉपरेट करेंगे तो स्कैमर्स को पकड़ा जा सकता है और उन पर इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको किसी भी अननोन नंबर से कॉल आए, मैसेज आए, ईमेल आए, उन्हें ओपन ना करें, किसी भी लिंक्स पर क्लिक ना करें। अपनी सुरक्षा आपके ही हाथ में है, अवेयर रहिए, जागरूक बनिए और अपने परिवार, दोस्त या किसी भी जानने वाले को इस जानकारी के बारे में बताइए और सतर्क रहने के लिए कहिए। हो सकता है आपके इस संकेत से वो भी सचेत हो जाए और ये फ्रॉड उनके साथ ना हो, और कभी ऐसा हो जाता है तो तुरंत साइबर क्राइम में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराए और अपने बैंक को इसके बारे में सूचित करे, जिससे इस पर एक्शन हो सके। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको थोड़ा सा जागरूक किया होगा। ऐसे ही एपिसोड के साथ जल्द मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए आप कहीं जाइएगा मत, मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा और सुनते रहिएगा हमारा शो वी रिलैक्स ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू आरजे आयुष के साथ। लेकिन तब तक

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं वेणुधोनी 90.4 एफएम केएलई कनसू। आज के इस विशेष प्रोग्राम में मनीषा आपका स्वागत करती है। सितंबर मंथ जो कि चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस मंथ हम सेलिब्रेट करते हैं, तो इसी के चलते बच्चों में कौन कौन से प्रकार के कैंसर होते हैं, क्या इसका इलाज है, इसके बारे में आज के एपिसोड में हम जान लेंगे। और इसी के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अभिलाषा, जो कि केली संपत कुमार शिवनगी कैंसर हॉस्पिटल की हेडिंग द डिवीजन ऑफ पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी, और उसी के साथ केली जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी है। मैम वेणुधुन के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू मिसेस मनीषा, ग्रीटिंग्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट केली कैंसर हॉस्पिटल। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: आज हम चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस मंथ, जो अभी सितंबर मंथ पूरा हो चुका है, उसके बारे में जान लेंगे। सबसे पहले तो बच्चों में होने वाले जो कैंसर है वो कौन कौन से प्रकार के हैं?
1: बच्चों में बहुत प्रकार के कैंसर होते हैं। हर साल हमारे देश में लगभग 50,000 से 60,000 न्यू केसेस आर डायग्नोस्ड एवरी ईयर। उसमें जो सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है बच्चों में वो है ब्लड कैंसर।
0: अच्छा,
1: उसमें एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जो कि एक तरह का ब्लड कैंसर है, वो सबसे ज्यादा कॉमन है। सो 40% ऑफ द केसेस आर ऑफ ब्लड कैंसर। सो बट द गुड न्यूज इज, जो सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, उसका क्योर रेट ऑलमोस्ट 80-90% है।
0: ओके,
1: उसके बाद जो सेकेंड कॉमनेस्ट कैंसर है अपार्ट फ्रॉम ल्यूकीमियाज इज लिम्फोमास, देन वी हैव ब्रेन ट्यूमर्स, देन पेट का अलग तरह का के कैंसर होते हैं, जैसे कि किडनी ट्यूमर्स, न्यूरोब्लास्टोमास, फिर बोन कैंसर्स, बोन ट्यूमर्स, फिर मसल के कैंसर्स जैसे कि राब्डोमायोसार्कोमास, देन आईज के कैंसर जैसे रेटिनोब्लास्टोमा जो आईज में होता है। सो ये सब, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स, बट यस द कॉमनेस्ट इज ब्लड कैंसर, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया इज द कॉमनेस्ट फॉलोड बाय अदर।
0: तो बच्चों में इतने सारे कैंसर पाए जाते हैं, जैसे कि आपने अभी आंकड़ा भी बताया कि 50 to 60,000

0: ईयरली डायग्नोस होते हैं, तो इतना कैसे क्या बढ़ गया है कैंसर का प्रमाण?
1: बिल्कुल, ये हर पेरेंट जिनके बच्चों का कैंसर डायग्नोस होता है उनका फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि आप बच्चों में भी कैंसर होता है, बिकॉज वो ऐसा सोचते हैं कैंसर सिर्फ बड़ों की बीमारी है
0: करेक्ट.
1: ना, लेकिन बच्चों में ऑब्वियसली बड़ों के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, लेकिन बच्चों में भी कैंसर कॉमन है. सो जैसे बड़ों में हम बोलते हैं कि कैंसर इज कैन बी ड्यू टू लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, यू नो लाइक ज्यादा स्मोकिंग या अल्कोहल या लैक ऑफ एक्सरसाइज, ऑल दीज थिंग्स. बट बच्चों में इट इज़ नॉट ड्यू टू लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, बट इट कैन बी ड्यू टू जेनेटिक, आई मीन देर आर सम जेनेटिक सिंड्रोम्स, सो कैंसर कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, दोज आर नॉट वेरी कॉमन. देन सम अदर जेनेटिक फैक्टर्स, फिर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगर हम देखें तो जैसे पेस्टिसाइड्स या फिर रेडिएशन एक्सपोजर या फिर सम वायरल इन्फेक्शंस लाइक एप्स्टीन बार वायरस, ऐसे ये सारे कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं बच्चों में कैंसर के, बट एग्जैक्ट कॉज पिन पॉइंट करना ऐसा नहीं बोल सकते. मेनली बच्चों में इट्स काइंड ऑफ जेनेटिक, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेरेंट्स से ही आया है और हमेशा पेरेंट्स को ब्लेम करना है. इट्स नॉट लाइक दैट, ये दिस इज अ मिथ अबाउट चाइल्डहुड कैंसर.
0: कई कई केसेस में ऐसा भी पाया जाता है मैम कि जेनेटिक भी नहीं होता फिर भी कैंसर डायग्नोस होता है, तो जैसे कि आप अभी बोली रही है कि उसका एग्जैक्ट रीजन हम नहीं बोल सकते, काफी सारे रीजन रह सकते हैं, फिर भी एक चिंता रहती है कि क्यों ऐसे हो गया और क्या करना चाहिए. ये कैंसर सुन के ही लोग घबरा जाते हैं, तो इसके लिए क्या बोलेंगे आपके, क्या करना चाहिए?
1: या सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट ऑन अ पॉजिटिव नोट. पहले तो घबराना नहीं चाहिए, इट्स होपलेसनेस वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए. इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड बी होपफुल अबाउट इट, बिकॉज बच्चों के कैंसर का क्योर रेट बहुत अच्छा है.
0: अच्छा.
1: है ना, बच्चे कीमोथेरेपी बहुत अच्छा टॉलरेट करते हैं, और अगर सही टाइम पे डायग्नोसिस हो और सही तरीके से उनका ट्रीटमेंट हो तो हम बच्चों को, आई मीन द कैंसर कैन बी कम्प्लीटली क्योर्ड इन अराउंड 70-80% ऑफ द केसेज, एंड वो दे कैन लिव फॉर नेक्स्ट 50-60-70 ईयर्स. तो सबसे पहले तो वी शुड नॉट लूज होप्स, घबराने की बात नहीं है, एंड अवेयरनेस होना चाहिए, जिससे कि कैंसर का मैंने बताया कि क्योर रेट बहुत अच्छा है, बट वो अच्छा तब है अगर कैंसर टाइम पे डायग्नोस हो जाए और सही तरीके से ट्रीटमेंट हो. तो टाइम पे डायग्नोस होने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स या जनरल पब्लिक को कैंसर के जो इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग साइंस, वार्निंग साइंस जो बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हो, क्योंकि जो कैंसर होता है बच्चों का वो दे मिमिक नॉर्मल चाइल्डहुड इलनेसेस. फॉर एग्जाम्पल, फीवर इज वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन. अब मैं इस माध्यम से पेरेंट्स को डराना नहीं चाहती कि एवरी फीवर इज कैंसर, नो. जैसे कि किसी भी बच्चे को बुखार चल रहा है, फीवर इज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जिसका कि कोई डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, कोई इन्फेक्शियस कॉज या कोई अंडरलाइंग हमें पता नहीं चल रहा है, तो उसमें एक हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस जिसको बोलते हैं, एक सस्पिशन कैंसर का भी होना चाहिए और कैंसर का भी वर्कअप होना चाहिए. नॉट इन एवरी सिंपल फीवर विच इज ड्यू टू कॉफ, कोल्ड और सिंपल इन्फेक्शन, बट दैट इज नोन एज पायरेक्सी ऑफ अननोन ओरिजिन, जो बहुत लंबे समय से बुखार चला जा रहा है, बच्चों को एंटीबायोटिक्स मिल चुका है, कॉमन इलनेसेस का ट्रीटमेंट मिल चुका है, फिर भी बच्चे को बुखार हो रहा है, तो फीवर विच इज अ वेरी कॉमन सिम्टम इन चिल्ड्रन, बट दैट कैन बी अ सिम्टम ऑफ कैंसर एज वेल. सेकेंड, यूजली बच्चे क्या होते हैं, दे आर वेरी एक्टिव, दे आर वेरी प्लेफुल, उनका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है, बट आप किसी भी बच्चे को देख रहे हैं कि ही इज गेटिंग टायर्ड वेरी इजिली, है ना, इजी फटीगेबिलिटी, और द चाइल्ड इज लुकिंग पेल, उसका रंग थोड़ा सा सफेद हो रहा है, तो हम पेरेंट्स यूजुअली, हर पेरेंट्स को, हर एक स्पेशली मदर्स को ऐसा लगता है माय चाइल्ड इज नॉट ईटिंग प्रॉपरली, मेरा बच्चा ठीक से खा नहीं रहा है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से वो पेल हो रहा है या उसकी वजह से उसके एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो रहे हैं, बट दिस कुड बी अ साइन ऑफ कैंसर. जैसा कि मैंने बताया ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर में हमारे तीन तरह के सेल्स अफेक्ट हो सकते हैं, एक रेड ब्लड सेल जिसकी कमी की वजह से अनीमिया होता है, तो रेड ब्लड सेल कम होने की वजह से बच्चा बहुत जल्दी थक सकता है, व्हाइट ब्लड सेल ओके न्यूट्रोफिल्स, उसमें अगर वो कम हो गया तो बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, तो किसी बच्चे को रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, या प्लेटलेट्स, दीज आर द थ्री कॉम्पोनेंट्स ना, तो अगर प्लेटलेट कम होने की वजह से, जो कि डेंगू में भी अक्सर कम होता है, तो वो अगर कम होने की वजह से बच्चे को ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे बॉडी पे ब्रूजेस आने, नीले निशान पड़ना है ना, या कहीं से नाक से मुंह से ब्लीडिंग होना, तो ये सब बहुत कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि दूसरी बीमारियों में भी हो सकता है, बट ये कैंसर के भी लक्षण हो सकते हैं.
0: अच्छा.
1: हाँ, उसी तरह जैसे कहीं पे गांठ आना, मैंने बताया ल्यूकीमियाज के बाद नेक्स्ट कॉमन कैंसर इज आफ्टर ब्रेन ट्यूमर इट इज लिम्फोमास, तो कहीं पे भी गांठ आना, लिम्फ नोड्स जो बोलते हैं उनका बड़ा हो जाना, या कहीं पे ऐसा स्वेलिंग दिखना शरीर के किसी हिस्से में, वो भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है. एक सिम्टम जिसकी वजह से डायग्नोसिस हमेशा, मतलब काफी सिचुएशन में डिले हो जाता है, जिसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, वो है बोन पेन. छोटे बच्चे अगर कंप्लेन करते हैं कि उनको बहुत सिवियर बोन पेन हो रहा है, हाथ पैर में दर्द, यूजुअली आई मीन एवरी बोन पेन इज नॉट कैंसर, देयर इज समथिंग नोन एज ग्रोइंग पेन्स, वो बच्चे बढ़ते बच्चों में कॉमन है. लेकिन अगर वो पेन इतना सिवियर है कि बच्चे उसकी वजह से सो नहीं पा रहे हैं या उनको चलने में तकलीफ हो रही है, तो बोन पेन कैन ऑल्सो बी अ साइन ऑफ कॉमन चाइल्डहुड कैंसर्स लाइक ल्यूकीमियाज. यूजुअली अगर कहीं पे बोन पेन हुआ बच्चों को तो हम सोचते हैं कहीं गिर गया होगा. इट इज यूजुअली एट्रीब्यूटेड टू सम इंजुरी ट्रॉमा, बट दैट हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली. देन बड़े लोगों में हेडेक कॉमन है, यू नो स्ट्रेस हेडेक, बट बच्चों में हेडेक कॉमन नहीं है. बट इफ अ चाइल्ड इज यू नो कंप्लेनिंग ऑफ रिपीटेड हेडेक, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग हेडेक विच इज एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग, हेडेक विथ वॉमिटिंग स्पेशली अर्ली मॉर्निंग एंड प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, दैट इज अ रेड फ्लैग साइन ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स. बिकॉज बच्चों में सेकेंड कॉमनेस्ट कैंसर जो है वो है ब्रेन ट्यूमर्स, सो दैट शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड. या किसी बच्चे को चलने में तकलीफ हो रही है, उसका बैलेंस ठीक नहीं है, सो दैट कैन बी अ साइन ऑफ ब्रेन ट्यूमर. देन एक आईज का कैंसर मैंने बताया, रेटिनोब्लास्टोमा. तो अगर आईज में मतलब प्रोप्टोसिस जिसको बोलते हैं, आंखें बाहर आ रही हैं, मतलब तो उस केस में डायग्नोस करना इजी है. लेकिन देयर इज समथिंग नोन एज वाइट आई रिफ्लेक्स. आजकल जैसे सेल्फी लेते हैं या फोटोज में अगर उनको लग रहा है कि आंखों की जो जैसे कैट की आईज में वैसा वाइट आई रिफ्लेक्स, कैट आई रिफ्लेक्स, आंखें चमक रही हैं, सो दैट कैन बी अ साइन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा. सो दैट इज ऑफन पिक्ड अप लेट स्टेज में हमारे पास वो आते हैं. तो ये सटल साइंस एंड सिम्टम्स विच मिमिक कॉमन इलनेसेस, यू नो लाइक सिंपल इन्फेक्शन, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, बोन पेन, अगर इन सब की नॉलेज हो और पेरेंट्स जल्दी बच्चों को डॉक्टर के पास ले आए और वो जल्दी डायग्नोस हो जाए, तो उसका ट्रीटमेंट भी सिंपल होता है और प्रोग्नोसिस भी बहुत अच्छा होता है, क्योर के चांसेस और बढ़ जाते हैं. सो डरने की बात नहीं है, अवेयरनेस फैलाना है.
0: करेक्ट. इतने सारे जो आपने कैंसर बताए और उसके सिम्टम्स भी आपने अच्छी तरह से समझा दिए, कुछ एक एग्जाम्पल हम लेंगे कि जो बहुत कॉमन आप बोल रही है अभी कि ब्लड कैंसर बहुत ही कॉमन है, अगर वो किसी को डायग्नोस हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे रहता है और क्या होता है वो पेशेंट के साथ?
1: ओके. सो कैंसर ओवरऑल अगर हम कैंसर का ट्रीटमेंट लें तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज है. जहां तक बच्चों के कैंसर की बात है जिसमें सबसे कॉमन ब्लड कैंसर है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो यूजुअली कीमोथेरेपी का होता है. ओके. और जो सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं जैसे कि मैंने बताया किडनी ट्यूमर्स, रीनल ट्यूमर्स लाइक विल्म्स ट्यूमर, ओके, न्यूरोब्लास्टोमा या बोन ट्यूमर्स, रैबडोमायोसारकोमा, ऐसे जो ट्यूमर्स होते हैं सॉलिड ट्यूमर्स, उसमें सिर्फ कीमोथेरेपी काफी नहीं है. कीमोथेरेपी के साथ सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है, एंड डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द ट्यूमर एंड साइट ऑफ द ट्यूमर, रेडिएशन थेरेपी. सो थ्री मेन मॉडालिटीज, कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, ये तीन तो होता ही है. और कुछ कुछ कैंसर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी जरूरत लगती है, स्पेशली दोज कैंसर्स विच हैव रिलैप्स्ड, जो दोबारा आ गया है ब्लड कैंसर, या फिर सम ब्लड कैंसर्स विच आर रिफ्रैक्ट्री, जो सिंपल कीमोथेरेपी से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या फिर एडवांस सॉलिड ट्यूमर्स जैसे कि न्यूरोब्लास्टोमा स्टेज फोर, तो उसमें ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करना पड़ता है. तो दीज आर द मेन मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट. इसके साथ साथ देर आर सम रीसेंट एडवांसेस, लाइक अभी इम्यूनोथेरेपी है, जैसे कार टी सेल थेरेपी, अगर आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, ल्यूकीमियाज के लिए, या आजकल टारगेटेड थेरेपी है. सो दीज आर द कॉमन मोडालिटीज. बट आपने बिकॉज ब्लड कैंसर की बात की, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, सो 70-80% ऑफ द केसेस में सिर्फ कीमोथेरेपी से ही काम चल जाता है. कुछ केसेस में रेडियोथेरेपी की भी जरूरत पड़ती है, जैसे ब्रेन में भी अगर वो पॉजिटिव है.
0: अच्छा.
1: या रिलैप्स हो गया है, और कुछ केसेस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है.
0: कैंसर बोले तो कीमोथेरेपी, ये सबको अभी कॉमनली पता है, और ये भी जानते हैं कि कीमोथेरेपी से बहुत तकलीफ होती है या फिर साइड इफेक्ट्स उसके हैं, तो क्या है एक्चुअल?
1: एक्चुअली देर आर लॉट ऑफ मिथ्स एसोसिएटेड विद कीमोथेरेपी. हाँ, थोड़ा साइड इफेक्ट होता है, बट बच्चे कीमोथेरेपी को बहुत अच्छा टॉलरेट करते हैं.
0: अच्छा.
1: इतना साइड इफेक्ट्स भी नहीं है अगर वो प्रॉपरली दिया जाए. सो बच्चों का जो डोज होता है कीमोथेरेपी का, वो बॉडी सर्फेस एरिया के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, कि जितना उसका बॉडी सर्फेस एरिया है उसके अकॉर्डिंग. या आजकल इतने सारे एडवांस टेस्ट है कि कौन सा बच्चा किस कीमोथेरेपी को कैसे मेटाबोलाइज करेगा, कैसे टॉलरेट करेगा, तो उसके भी कुछ टेस्ट होते हैं जिसके बेसिस पे हम डोज को मॉडिफाई कर सकते हैं. तो इन सब चीज़ों का, कीमोथेरेपी के पहले बच्चे को कैसे हाइड्रेशन देना है और जो टॉक्सिसिटीज जो हम पहले से एंटिसिपेट कर रहे हैं उसको कैसे मैनेज करना है, तो ये अगर एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन के पास और एक अच्छे सेंटर पे जहाँ पे ऐसे डिजीजेस को ट्रीट करने का अच्छा एक्सपीरियंस है, तो इसके टॉक्सिसिटीज को बहुत लेवल तक कम किया जा सकता है. तो इसके सारे टॉक्सिसिटीज देर, यस देर आर फ्यू टॉक्सिसिटीज, बट दे कैन बी मैनेज वेरी वेल. फॉर एग्जाम्पल, कीमोथेरेपी के बाद बच्चों को वॉमिटिंग होती है, हम जानते हैं ये. तो उसके लिए बहुत अच्छे एंटीएमेटिक्स हैं जो कि हम प्रोफाइलैक्टिकली बच्चों को देते हैं, ताकि वॉमिटिंग से या बच्चा डिहाइड्रेट नहीं हो, उसको ज्यादा तकलीफ नहीं हो. सो लाइक दिस, कीमोथेरेपी से इतना डरने की बात नहीं है.
0: अच्छा.
1: उसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है, और बच्चों का लिवर, किडनी सब स्ट्रांग होता है, तो वो बहुत अच्छे से मेटाबोलाइज करते हैं ड्रग्स को. सो एवरी टॉक्सिसिटी इज मैनेजेबल.
0: जबकि अभी बच्चों की बात हो रही है मैम, तो कौन से एज ग्रुप में मतलब बच्चों का जो कैंसर है वो पाया गया है, मतलब अभी 10th के बाद, मतलब एज ऑफ 10 या फिर बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनमें से ही स्टार्ट हुआ है, क्या है वो?
1: सो बच्चों का कैंसर किसी भी एज में हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूबॉर्न, एक नवजात शिशु भी कैंसर के साथ पैदा हो सकता है.
0: अरे बाप रे.
1: टिल हमारा जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है दैट इज टिल 18 इयर्स. अभी AY एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट्स जिसमें कि हम 21-22 इयर्स तक भी ट्रीट करते हैं. सो किसी भी एज में हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन अगर देखा जाए तो 50% ऑफ द चाइल्डहुड कैंसर्स आर बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स, बट इट कैन बी इन एनी एज, एडोलेसेंट, यंग एडल्ट्स, इवन अ न्यूबॉर्न चाइल्ड कैन बी बॉर्न विद कैंसर.
2: KLE ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೆಳಗಾವಿ
3: ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ಹಾಗೂ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ
2: KLE ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, KLE's ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ MRC ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನೆಹರು ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜೀವ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಆಶಾ ಕಿರಣವಾದ KLE ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೆಳಗಾವಿ. ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
3: KLE ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ರಕ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅನ್ನನಾಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
2: ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ BMT ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
3: ವಿಳಾಸ KLE ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, KLE's ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು MRC ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನೆಹರು ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿ.
2: ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0831255250 ಮತ್ತು 2473777, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 6360712326 or just dial 1099.
3: ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ KLE ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೆಳಗಾವಿ.

0: जैसे कि आपने बताया कि शरीर पे जो नीले निशान या गांठ दिखाई देती है, तो वैसे कुछ अगर दिखाई दे तो क्या करना चाहिए?
1: ओके, सो शरीर पे नीले निशान जो कि स्किन ब्लीड्स है ना, जिसको हम बोलते हैं पेटिकिया, परप्यूरा और एकाइमोसिस, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैंसर में ही होता है, क्योंकि ये इट्स वेरी कॉमन इन द पीडियाट्रिक एज ग्रुप, और पेरेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है. वो किसी भी ऐसे कंडीशन में जिसमें प्लेटलेट्स कम हो गया है, या बच्चे को एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं वैस्कुलाइटिस, उसमें ऐसे नीले निशान दिख सकते हैं. बट येस, इट इज़ अ रेड फ्लैग साइन. तो कभी भी ऐसा नीला निशान दिखे या बच्चे को कहीं से खून आ रहा है नाक से मुंह से, तो तुरंत उनको जाके एक सिंपल ब्लड टेस्ट, आई मीन अपने नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना चाहिए, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. और उनके एडवाइस से एक सिंपल ब्लड टेस्ट, CBC जिसको हम बोलते हैं, हीमोग्राम, वो करवाना चाहिए. तो उसमें वो देखते हैं कि प्लेटलेट का कम है, या फिर उनका PTA PTT जिसको हम कोएगुलेशन प्रोफाइल बोलते हैं, वो डीरेंज्ड है, और उसके अकॉर्डिंग इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए ताकि बच्चे को कोई इंटरनल ब्लीडिंग ना हो. क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, इट कैन बी डेंजरस. सो अप्रोच योर पीडियाट्रिशियन एट द अर्लीस्ट, जो भी आपके नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन है. कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली कैंसर के डॉक्टर के पास ही जाना है. और ये वेरियस ब्लड डिसऑर्डर्स में भी ऐसा हो सकता है, जैसे वेरी कॉमन कंडीशन ITP, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उसमें भी बच्चों के बॉडी पे ऐसे नीले निशान हो सकते हैं. तो इट्स नॉट ऑलवेज ड्यू टू कैंसर, उसमें डरने की बात नहीं है, बट येस, दिस इज अ रेड फ्लैग साइन.
0: अगर कोई बच्चा कैंसर से पीड़ित है तो उनका क्या रहना चाहिए, लाइफस्टाइल बोलिए या फिर डाइट प्लान, उनका कैसे रहना चाहिए?
1: ओके, सो बिफोर गोइंग टू दैट, बच्चे का ट्रीटमेंट कैसे सेंटर पे होना चाहिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वहाँ पे वो आपको प्रॉपरली एक एक चीज के लिए गाइड करेंगे. बच्चों का जो कैंसर होता है, इट इज नॉट लाइक, चिल्ड्रन आर नॉट मिनिएचर एडल्ट्स, है ना, कि सो उनका इट्स अ ग्रोइंग चाइल्ड, डेवलपिंग चाइल्ड, उनका देयर बॉडी इज ग्रोइंग, देयर नीड्स आर डिफरेंट, है ना. और मैंने डिफरेंट ट्रीटमेंट मॉडलिटीज के बारे में बताया. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी बच्चे का जब कैंसर डायग्नोज होता है तो दे शुड गो टू अ सेंटर वेयर ऑल दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल अंडर वन रूफ.
0: करेक्ट,
1: बिकॉज यू नो इन चाइल्डहुड कैंसर और इन एनी कैंसर फॉर दैट मैटर, फर्स्ट चांस इज द बेस्ट चांस. जब पहली बार हम ट्रीट करते हैं तो ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और चाइल्डहुड कैंसर में तो बहुत ज्यादा अच्छा क्योर रेट है ना. तो ऐसी जगह पे जाना जहाँ सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, वेर यू हैव अ ट्रेंड, वेरी वेल ट्रेंड पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट, वेर यू हैव अ पीडियाट्रिक सर्जन, पीडियाट्रिक ऑन्को सर्जन, वेर यू हैव अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट. एंड आजकल ये भी देखना चाहिए जहाँ पे ट्रांसप्लांट की भी फैसिलिटीज अवेलेबल हो. तो बच्चों का जो ट्रीटमेंट होता है कैंसर का, तो कीमोथेरेपी, ये एक फिक्स प्रोटोकॉल होता है जो हम वर्ल्ड वाइड फॉलो करते हैं एट एवरी सेंटर, जो वर्ल्ड वाइड एविडेंस बेस्ड, जो मोस्ट एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल है, वो फॉलो करके हम कीमोथेरेपी देते हैं. हाँ, कीमोथेरेपी, गिविंग कीमोथेरेपी इज एन आर्ट, इट्स नॉट कि कोई भी वो इंजेक्शन को दे सकता है. तो उसको देने के लिए भी हमें ट्रेंड लोग चाहिए होते हैं, जैसे कि वी शुड हैव अ प्रॉपर ऑन्को फार्मासिस्ट, ऐसा वहाँ पे आइसोलेशन रूम्स होने चाहिए न्यूट्रोपिनिक पेशेंट्स के लिए, कीमोथेरेपी रिकॉन्स्टिट्यूशन यूनिट होना चाहिए, है ना. तो ये हो गई बात. ट्रेन्ड नर्सेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नर्सेस आर द बैकबोन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पीडियाट्रिक कैंसर्स. तो ये सब होना चाहिए. साथ ही साथ, जैसा कि आपने बात की क्या केयर, तो एक अच्छी ट्रेंड ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइटिशियन होनी चाहिए जो कि क्या खाना है बच्चों को वो बताए, मैं उसके बारे में भी बात करूंगी. ये सारी इन्फेक्शन कंट्रोल पर्सन होना चाहिए, है ना. सो जहाँ पे ये सारी, और एक अच्छा ब्लड बैंक होना चाहिए, और दूसरे स्पेशलिटीज का भी बैकअप हो, जैसे गुड ICU केयर इज अवेलेबल, है ना, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, बच्चों में पिक लाइन्स, कीमोपोर्ट, इन सब की जरूरत होती है. तो जहाँ पे डायग्नोस्टिक वर्कअप अच्छा हो सके, सो जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो वहाँ पे होना चाहिए. जहाँ तक ओवरऑल केयर की बात है, तो आपने बोला और क्या उनको सपोर्टिव केयर अच्छा देना चाहिए, तो चाइल्डहुड कैंसर में सपोर्टिव केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपने डाइट की बात की, तो ये जो बच्चे होते हैं, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स की हम बात कर रहे थे, तो वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी, अपार्ट फ्रॉम हेयर फॉल, बालों का झड़ना या वॉमिटिंग, दीज आर कॉमन साइड इफेक्ट्स. वन साइड इफेक्ट विच वी हैव टू मैनेज वेरी इफेक्टिवली इज फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया. जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो कीमोथेरेपी कैंसर के सेल्स पे तो काम करता ही है, कैंसर के सेल्स को किल करने के लिए, बट उसके साथ साथ हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स भी अफेक्टेड होते हैं, तो जिसकी वजह से WBC में जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो काफी कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स काफी कम हो जाते हैं. तो न्यूट्रोफिल्स कम होने की वजह से बच्चों की इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है. जैसे हमें नॉर्मल सर्दी खांसी होती है तो हम अपनी इम्यूनिटी से ही 6-7 दिन में ठीक हो जाते हैं, बट इन बच्चों में एक सिंपल सर्दी खांसी, सिंपल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, जानलेवा हो सकती है, बिकॉज दे डोंट हैव न्यूट्रोफिल्स, स्पेशली वो जब इंटेंसिव फेज ऑफ कीमोथेरेपी होता है, जब हम बहुत स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी देते हैं और बच्चों का न्यूट्रोफिल्स जीरो होता है, तो उस पीरियड में हम पेरेंट्स को स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं कुछ कुछ ट्रीटमेंट जो होता है डे केयर बेसिस पे भी होता है, जब हम बच्चों को कंटिन्यूसली हॉस्पिटल में नहीं रखते, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वो आते हैं, कीमोथेरेपी लेते हैं, फिर घर चले जाते हैं, तो घर पर उनको कैसे केयर करना है? तो बच्चों को ऐसे जगह पर रखना है जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हो, उनका एक सेपरेट रूम होना चाहिए। हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, तो हम पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं कि कैसे उनको हैंड वॉश करना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है, खाने के लिए फ्रेशली कुक्ड फूड, अब कल रात का बना या सुबह का बना हुआ खाना फ्रिज में रख के शाम को देना वो नहीं हो सकता, दे हैव टू बी गिवन फ्रेशली कुक्ड फूड। वो हमेशा पूछते हैं कौन सा फ्रूट दे सकते हैं, सो यू कैन नॉट गिव एनी फ्रूट विच डजेंट हैव अ थिक पील, जैसे कि चीकू, कीवी, ग्रेप्स, द्राक्षी, ऐसे फ्रूट्स आप नहीं दे सकते जिनमें मोटा छिलका नहीं होता। सो एंड इट शुड बी वेरी फ्रेश, एंड कोई भी रॉ सैलड्स नहीं दे सकते, इट हैज़ टू बी बॉइल्ड, इट हैज़ टू बी ओनली कुक्ड फूड इज अलाउड। सो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अगर बच्चे को थोड़ा सा भी फीवर आया तो घर पे पैरासिटामोल देके बैठना नहीं है, विद इन हाफ एन आवर दे शुड रीच द हॉस्पिटल, विद इन वन आवर एंटीबायोटिक शुड बी स्टार्टेड। तो हम पहले से ही उनके पास एक एंटीबायोटिक कार्ड और एक डोज एंटीबायोटिक्स का दे के ही उनको डिस्चार्ज करते हैं जब घर भेजते हैं, कि जैसे ही बच्चे को फीवर आया उनके पास वो कार्ड रहता है, जो भी सपोज बच्चा रात को 2 बजे 3 बजे आया है इमरजेंसी में, दे विल शो दैट कार्ड एंड इमीडिएटली ब्लड कल्चर भेज के उनका वो टेस्ट भेज के हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं। सो इन सब चीज़ों से जो ट्रीटमेंट आउटकम है वो बहुत इंप्रूव होता है, बच्चों का सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो पेरेंट्स शुड बी अवेयर ऑफ केयर ऑफ फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया, जब फीवर आया तो क्या करना है, क्या क्या वार्निंग साइंस है, एक मैंने आपको बताया फीवर, या फिर बच्चे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है या लूज मोशन हो रहा है, तो वो डिहाइड्रेट होने के पहले उनको हॉस्पिटल में पहुँच जाना है ना, या कहीं से पस डिस्चार्ज हो रहा है, या बच्चा बहुत डल या लेथार्जिक है, या ब्लीडिंग, दैट इज़ अ वेरी बिग वार्निंग साइन, कहीं से भी ब्लीडिंग हो रहा है इसका मतलब जैसे इनका न्यूट्रोफिल काउंट कम हो जाता है कीमोथेरेपी की वजह से, वैसे इनका प्लेटलेट काउंट कम होता है कीमोथेरेपी की वजह से, तो हमें उनका हर 2 दिन 3 दिन पे डिपेंडिंग ऑन द फेज ऑफ कीमोथेरेपी उनका सीबीसी करते हैं, उनका प्लेटलेट काउंट देखते हैं, अगर कम है तो हम उनको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं, है ना। तो अगर बच्चे को थोड़ा सा भी उनका ही दिख रहा है ऐसा ब्लीडिंग स्पॉट है या कहीं से खून आ रहा है, तो इमीडिएटली हॉस्पिटल आना है और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करना है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट आउटकम कैसा होगा, नॉट जस्ट द कीमोथेरेपी कि हम क्या इंजेक्शन दे रहे हैं, क्या प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, वो तो वर्ल्ड वाइड सेम प्रोटोकॉल इज फॉलोड एवरीवेयर बेस्ड ऑन द एविडेंस। So these small, small things are very important. They should not go to any crowded place. Sometimes the kids will look completely like a normal child, you know. Unko dekhe koi bol nahi sakta hai ki inko cancer hai after certain, you know, period of treatment. They want to go out. I mean, it's very difficult to control the kids. They want to play. So in sab cheezon ka dhyan rakhna important hai.
0: बिल्कुल, काफ़ी अच्छी तरह से समझाया मैम आपने। और मान लीजिए कि किसी को अगर कैंसर अभी डायग्नोस हो गया, ट्रीटमेंट भी कम्प्लीट हो गया, तो रिपीटेडली वो कैंसर मतलब वापस आने के चांसेस रहते हैं क्या?
1: येस, अराउंड कुछ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कैंसर, किस स्टेज पे वो डायग्नोस हुआ था, उसका हम रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन ऑल द साइटोजेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर स्टडीज, एवरीथिंग। तो जो हाई रिस्क कैंसर होते हैं उनके वापस आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। अच्छा। कभी कभी स्टैंडर्ड रिस्क वाले कैंसर्स भी वापस आते हैं, बट ऐसा नहीं कि हर कैंसर वापस आता है। येस, अराउंड 20-25% ऑफ द केसेज इट मे कम बैक डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कैंसर। तो लेकिन वापस आने के बाद भी उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। फर्स्ट टाइम जब हम ट्रीट करते हैं तो उसके ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, सेकंड टाइम थोड़े कम होते हैं, बट सेकंड टाइम भी होता है ना, कि जैसे मैंने ब्लड कैंसर का एग्जांपल बताया, तो अगर सेकंड टाइम बहुत अर्ली आ गया, ट्रीटमेंट खत्म करने के बहुत कुछ ही समय बाद अगर वो कैंसर वापस आ गया है, तो उसमें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, बट इवन दैट हैज़ अ क्योर, सो वी शुड नॉट लूज होप्स देयर।
0: ट्रांसप्लांट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि कौन से स्टेज पे ट्रांसप्लांट किया जाता है।
1: ओके, सो इट फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द कैंसर। तो अभी हम बिकॉज हम सिर्फ कैंसर्स की बात कर रहे हैं, बिनाइन कंडीशंस की बात नहीं कर रहे हैं। ट्रांसप्लांट बिनाइन कंडीशन मतलब नॉन कैंसरस कंडीशन, जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इनबॉर्न एरर्स ऑफ इम्यूनिटी, उसमें भी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, बट अभी हम सिर्फ कैंसर की बात करेंगे। तो अभी बच्चों के कैंसर में जो 2 तरह का ट्रांसप्लांट होता है, एक होता है ऑटोलॉगस और एक होता है एलोजेनिक।
0: अच्छा।
1: तो जो सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं जैसे कि न्यूरोब्लास्टोमा जो स्टेज 4 है, हाई रिस्क है, उसमें हमें ट्रीटमेंट इनिशियल कीमोथेरेपी सर्जरी करने के बाद ट्रांसप्लांट करना ही होता है, सो दैट इट इज़ कॉल्ड लाइक वी आर कंसोलिडेटिंग द ट्रीटमेंट, ताकि कैंसर पूरी तरह से क्योर हो जाए और उसके वापस आने के चांसेस बहुत कम हो जाए। लिम्फोमास जैसे कि कॉमनली आजकल हम हॉजकिंस लिम्फोमा में जो रिलैप्स या रिफ्रैक्ट्री केसेस हैं उसमें ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट। देन सो दिस ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट इज सिंपल, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ लाइक स्टेम सेल रेस्क्यू, बिकॉज कीमोथेरेपी की वजह से उनका जो नॉर्मल बोन मैरो के सेल्स थे वो चले गए हैं, तो उसको हम एक वी आर गिविंग देम स्टेम सेल्स टू क्रिएट अ न्यू मैरो। सबसे कॉमनेस्ट इंडिकेशन है वो यूजली रिलैप्स्ड या रिफ्रैक्ट्री ल्यूकीमियाज में, स्पेशली एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया या सीएमएल इन ब्लास्ट क्राइसिस वाले पेशेंट्स जो कि वर नॉट रिस्पॉन्डिंग. सो ऐसे केसेस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है. तो उसमें डिपेंड करता है कि अगर आप बच्चे को कोई मैच्ड फैमिली डोनर मिल गया, स्पेशली अगर मैच सिबलिंग भाई बहन जो कि फुल्ली एचएलए मैच्ड हैं या पेरेंट्स जो कि मैच्ड हैं, तो उसमें ट्रांसप्लांट थोड़ा आसान हो जाता है और उसका आउटकम भी बहुत अच्छा होता है और उसका कॉस्ट इन्वॉल्व इज ऑल्सो लेस. अगर मैच नहीं भी मिला कोई फैमिली में तो देर इज समथिंग नोन एज मैच्ड अनरिलेटेड डोनर. वर्ल्ड वाइड एचएलए रजिस्ट्री होती है जिससे कि हम अनरिलेटेड मैच डोनर भी ढूंढ सकते हैं, या फिर वी डू हाफ मैच ट्रांसप्लांट जिसको कि हैप्लो ट्रांसप्लांट बोलते हैं. वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बट उसमें भी क्योर रेट्स अच्छे हैं.
0: ये बोन मैरो कौन डोनेट कर सकता है, मतलब उसकी कंडीशन क्या रहनी चाहिए जो डोनर रहता है?
1: ओके, सबसे तो पहले तो डोनर, मैंने बताया दो तरह का मैच होता है, एक फुल मैच जो कि सबसे अच्छा है, या अगर फुल मैच हमें सिर्फ 20% केसेस में मिलता है.
0: करेक्ट.
1: तो बहुत सारे लाइक हाफ मैच ट्रांसप्लांट्स भी करने पड़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पर्सन शुड बी डिजीज फ्री. ओके, कि उसको वो बीमारी नहीं होनी चाहिए, वो फिजिकली फिट होना चाहिए, इस कंडीशन में होना चाहिए कि वो डोनेट कर सके. उसके पहले हम उनका ब्लड टेस्ट करते हैं कि उनके अकाउंट्स सब कुछ ठीक है. और फिर इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, इट्स नॉट लाइक, क्योंकि जब भी हम डोनेशन के लिए काउंसिल करते हैं रिलेटिव्स को तो दे गेट्स के एडवो डर जाते हैं, उसको तो नहीं होगा ना इतना, स्पेशली बच्चों के ट्रांसप्लांट में अगर भाई बहन डोनेट कर रहे हैं. अभी हमने जो रिसेंट ट्रांसप्लांट किया उसमें 3 साल की बच्ची ने अपना डोनेट किया स्टेम सेल्स, तो वो बहुत डर जाते हैं. लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट में ऐसा नहीं है कि हम लिवर या किडनी निकाल रहे हैं उनका, इट इज जस्ट वी आर जस्ट टेकिंग देयर स्टेम सेल्स. तो हम उनको कुछ इंजेक्शन देते हैं जिसको बोलते हैं कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, वो देके हम उनका स्टेम सेल्स मोबिलाइज करते हैं. और जैसे पेशेंट से प्लेटलेट, अगर आपने कभी डोनेट किया हो एसडीपी जैसे जिस मशीन से डोनेट, एफेरेसिस करके हम उनका स्टेम सेल्स निकालते हैं. इट्स वेरी सिंपल, तो डोनर को कोई तकलीफ नहीं होती. इट्स नॉट लाइक डोनेटिंग किडनी, इट्स वेरी सिंपल. Yeah, the transplant process is not that simple. It's a complicated process. It requires a lot of expertise and very good care, a teamwork. But donor ko koi hazard nahi hota. Donor ke health ko koi problem nahi hota. Jo hum stem cells banate hain, it is replenished very soon. Unki body wapas bana leti hai. So anybody can donate.
0: To abhi tak cancer ke bare mein humne kafi baatcheet ki ma'am. To ek cancer patient aap treat kar rahe hain, उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है, फिर उनका फॉलोअप करना कितना जरूरी है, वो कितना इम्पोर्टेंट है?
1: इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया बच्चों के कैंसर में 80% से 90% कैंसर ठीक हो जाते हैं. सो नाउ यू नो आवर फोकस इज नॉट जस्ट टू क्योर द कैंसर बट टू गिव देम अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ.
0: करेक्ट,
1: है ना. और हमने बात की कि कीमोथेरेपीज के टॉक्सिसिटीज हो सकते हैं, थोड़े बहुत लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटीज भी हो सकते हैं, है ना. और इट्स अ ग्रोइंग चाइल्ड, तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कैंसर डॉक्टर्स उनको फॉलोअप का डेट देते हैं. और ऐसा नहीं है कि कैंसर का मेरा ट्रीटमेंट खत्म हो गया, आई एम क्योर्ड, सो आई कैन, आई मीन आई नीड नॉट फॉलो अप. कुछ पेरेंट्स बहुत लाइटली लेते हैं, तो वो कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्वालिटी ऑफ लाइफ, वी हैव टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड हैज गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिकॉज आगे उनकी 50-60-70 ईयर्स की लाइफ बची हुई है. तो उसके लिए कुछ सेंटर्स पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थेरेपी ACT क्लिनिक बोलते हैं. वो सिर्फ उन इस पर्पज के लिए होता है कि जिनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया उनका हम कैसे केयर करें.
0: अच्छा.
1: तो उसमें हम उनको पीरियोडिक इंटरवल्स पे बुलाते हैं, उनकी ग्रोथ को, वेट, हाइट, बॉडी मास इंडेक्स, उनका रूटीन ब्लड टेस्ट, अगर कुछ स्कैन्स की ज़रूरत है तो वो स्कैन्स, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, ये सब, एंडोक्राइन, कुछ कुछ एंडो, जिन बच्चों को स्पेशली ब्रेन ट्यूमर के लिए रेडिएशन

0: बताया कैंसर वापस आने के बाद भी उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है।
1: तो ये फॉलोअप भी हम कितने दिन तक लेना चाहिए?
0: कुछ कुछ कैंसर्स में लाइफ लॉन्ग भी करना पड़ता है, बट एटलीस्ट 5 ईयर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट, दिस इज मिनिमम। बट क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, जैसे इनिशियली अच्छा। अभी जस्ट ट्रीटमेंट खत्म हुआ है तो अभी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैंसर, कुछ कैंसर्स में हम उनको मंथली बुलाते हैं फॉर एवरी 6 मंथ्स, आफ्टर दैट वी कॉल देम वंस इन 6 मंथ्स, देन मे बी वील कॉल देम वंस इन अ ईयर। सो डिपेंड्स,
1: फ्रीक्वेंसी
0: कम होती जाती है लेकिन उनको फॉलोअप में रहना पड़ता है। बट इसका मतलब ये नहीं हो कि उसके साथ एक स्टिग्मा एसोसिएटेड हो कि यू नो वी हैव सीन दैट इट्स वेरी पेनफुल दैट आफ्टर दे हैव कंप्लीटेड देयर ट्रीटमेंट दे आर कंप्लीटली नॉर्मल, बट दे आर नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। नो देयर इज लॉट ऑफ स्टिग्मा कि ये तो कैंसर, स्पेशली फीमेल्स में हमारे पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं कि इसकी शादी नहीं होगी। और जब कैंसर डायग्नोस होता है स्पेशली फॉर फीमेल, इट्स यू नो इट्स वेरी पेनफुल दैट दे से कि व्हाट इज द पॉइंट इन ट्रीटिंग अ फीमेल चाइल्ड, इसके बाद नोबडी इज गोइंग टू मैरी हर। सो दे शुड बी एक्सेप्टेड बैक इन द सोसाइटी आफ्टर ट्रीटमेंट विदाउट एनी स्टिग्मा लाइक एनी अदर नॉर्मल चाइल्ड। Just because they are following up doesn't mean they are still suffering or they have some defect. No. It's just a protocol.
1: Correct.

0: KLE Society's Dr. Prabhakar Kore Super Speciality Hospital. Cure for all health-related problems. Experienced doctors and ultra-modern facilities ke saath. KLE Society's Dr. Prabhakar Kore Super Speciality Hospital and Medical Research Center. Nehru Nagar, Pelagavi. Call 08312473777.
1: मैम अभी जो ये मंथ चल रहा है चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस मंथ जो कि सितंबर में सेलिब्रेट होता है, इसी के चलते आपके डिपार्टमेंट से क्या क्या प्रोग्राम चलते हैं?
2: ओके, सो हमने कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम किए, जो मैंने अब अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स की बात की, तो हमने पेरेंट्स के लिए कुछ एजुकेशन प्रोग्राम्स रखे, बच्चों के लिए कुछ फन एक्टिविटीज़, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, बट आई बिलीव मोर देन टॉकिंग इट शुड बी एक्शन. सो यू नो हमारे पास एक ब्लड कैंसर का बच्चा था जो कि बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड, द फादर इज़ अ डेली वेज वर्कर एंड बोथ द पेरेंट्स आर इलिटरेट. तो सिक्स मंथ्स पहले उसका AML डायग्नोस हुआ था, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, एक तरह का ब्लड कैंसर है. तो वो बच्चा कीमो रिफ्रैक्टरी था, मतलब कीमोथेरेपी देने के बाद भी ही वाज नॉट MRD नेगेटिव. तो उस केस में ट्रांसप्लांट वाज द ओनली ट्रीटमेंट ऑप्शन, सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट. तो जब पेरेंट्स हमारे पास आए थे, दे हैड कम इन अ वेरी डिफिकल्ट स्टेट, दे हैड कम टू अस, दे डिडंट हैव इवन 5,000 rupees. सो वी डिसाइडेड दैट दिस इज अ स्पेशल मंथ एंड वी समहाउ वी आर गोइंग टू डू, वी हैव टू डू द ट्रांसप्लांट ऑफ दिस चाइल्ड. सो हमने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प ली एंड दे वर काइंड इनफ टू हेल्प दैट चाइल्ड. एंड बहुत सारे NGOs दे केम फॉरवर्ड, आई वुड लाइक टू मेंशन देयर नेम्स, लाइक कैन किड्स, एकम फाउंडेशन, कैंसर पेशेंट्स एसोसिएशन, आई एम सॉरी इफ आई एम मिसिंग सम नेम्स, हमारे लोकल NGOs जैसे कि हमारे इनर व्हील क्लब, we got some minority funds also, some politicians also came forward to help. Aur in sab ki madad se, especially the main role was played by the hospital. Because jab tak hospital ki permission nahi ho to hum aage kuch nahi kar sakte. And almost just with all these helps, ek allogenic transplant karne ka minimum budget 15 to 20 lakhs ka hota hai. So a child whose father is a daily wage worker, who's illiterate, humne uska transplant kiya and by God's grace it was successful. And bacha abhi ghar pe hai, he's in a good condition, 1 month post transplant, post discharge, he's doing well. So this was a initiative taken by our hospital to help a poor child. Aise hi hamare paas abhi ek stage 4 neuroblastoma ka patient aaya jiske father nahi hai, so we gave chemotherapy free of cost to the child aur uske transplants ke liye bhi hum funds raise kar rahe hain.
1: Acha, to KLE Sampath Kumar Shivangi Cancer Hospital jo hai hamara, yahan pe kya kya facilities hai abhi cancer ko leke?
2: Okay, तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए यहाँ पे सब कुछ है. तो हम बात कर रहे हैं पीडियाट्रिक कैंसर की, तो वी हैव अ वेरी गुड टीम. सो देर आर टू पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट, माइसेल्फ डॉक्टर अभिलाषा एंड डॉक्टर निरंजन. देन वी हैव अ वेरी गुड टीम ऑफ ट्रेन नर्सेज हु आर ट्रेन फ्रॉम सेंटर्स लाइक टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड एम्स, जो कि हमने 2017 में अपना कैंसर पीडियाट्रिक कैंसर केयर स्टार्ट किया था यहाँ पे, तो अभी 10 साल हो गए. सो ऑल दोज नर्सेज आर वेरी वेल ट्रेंड विथ 10 years of experience. We have trained onco pharmacist who is again very well experienced. We have dietitians who are trained in onco nutrition. Then we have other facilities like hospital ke infrastructure ki agar baat kare to special isolation room aapko jaisa chahiye hota hai, chemotherapy reconstitution unit, cancer ka jaisa special ward, to ye sab facilities hain. I mean these are the basic things. Apart from that we have state of art

0: ट्रांसप्लांट फैसिलिटीज़, वी हैव अ स्पेशलाइज्ड बीएमटी यूनिट, और एनजीओ सपोर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कैंसर में जो सबसे बड़ी टॉक्सिसिटी होती है दैट इज़ फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी. क्योंकि ट्रीटमेंट, हमने कॉमनेस्ट कैंसर की बात की, ALL, उसका ट्रीटमेंट अराउंड 2.5 years, 2.5 साल तक चलता है, जिसमें 6 months इंटेंसिव फेज होता है. तो इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट पेरेंट्स को देना बहुत ज़रूरी होता है. इवन जो अफोर्डेबल होते हैं वो भी फाइनेंशियली ड्रेंड आउट हो जाते हैं बाई द एंड ऑफ 2.5 to 3 years, बिकॉज यू नो वी हैव सो मेनी पेरेंट्स वेर द फादर हैज़ लॉस्ट द जॉब बिकॉज ही हैज़ टू बी विद द चाइल्ड राउंड द क्लॉक. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द मदर टू मैनेज अलोन. सो KLE Cancer Hospital is the only hospital in North Karnataka which is empaneled to all the government schemes for cancer, for pediatric cancer. So we have all the government schemes, plus we have MOU with all the national NGOs, very good NGOs. A lot of funds come to KLE Hospital from all these NGOs. So we have two trained social workers provided by the NGOs who round the clock work to raise funds to help these poor children. So we don't discriminate any child based on their financial status. Ki this child is coming from a very low socio-economic status, this child is well off. But having said that, ek message dena chahungi ki it's very important ki bachchon ka bhi health insurance ho. Recently I had a chance to visit US for a short training academic visit. So wahan pe maine dekha sab kuch insurance mein cover hota hai, but hamare country mein bachchon ke insurance ko leke itna awareness nahi hai. Adults mein insurance hota hai, to har ek bacche ka, although government help hai, schemes ke through help hai, NGO ke through help hai, but it's very important ki health insurance bhi ho. Because cancer ke treatment mein kafi kharcha hota hai,
1: bilkul,
0: aur agar cancer wapas aa gaya, agar transplant ki zarurat hui, to you have to be financially very well off to make sure that your child receives, you know, comprehensive treatment. तो ये फैसिलिटी होना किसी भी कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे सोशल वर्कर्स हो, फंड्स हो, एनजीओ सपोर्ट हो, गवर्नमेंट स्कीम्स हो, नॉट जस्ट अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ थिंग. और KLE का जो ब्लड बैंक है दैट इज़ वेरी स्पेशल. वी हैव अ वेरी गुड ब्लड बैंक जहाँ पे एफेरेसिस की फैसिलिटी है, स्टेम सेल कलेक्शन होता है, और अदर स्पेशलिस्ट आर देयर. As I said, all the facilities in one roof. We have very well-trained oncosurgeons. We have very good radiation oncologists. We have interventional radiologists. We have good intensivists. So all the specialties are there under one roof. So all these facilities are available.
1: यानी KLE संपत कुमार शिवनगी कैंसर हॉस्पिटल जो है वो कैंसर की तरह ही बाकी सारी जो बीमारियां हैं उनको लेके भी परिपूर्ण है अपने इसमें. यानी सभी तरह की फैसिलिटीज KLE हॉस्पिटल में अवेलेबल है.
0: बिल्कुल.
1: जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था मैम आज का, जो बच्चों का कैंसर, उस पर हमने बातचीत की और काफ़ी डिटेल में आपने सभी इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए समय दिया. सो थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू.
1: अभी तक हमने डॉक्टर का रोल जान लिया, पेरेंट्स का रोल जान लिया कि कैंसर अगर कैंसर अगर होता है किसी बच्चे को तो क्या करना चाहिए पेरेंट्स को. सोसाइटी का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो उनका रोल क्या रहता है इसमें?
0: सोसाइटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है. जैसे कि इन बच्चों को बहुत ज़्यादा ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड प्लेटलेट्स एक्सेट्रा. सो उनको ब्लड डोनेट करना चाहिए. जैसा कि मैंने बताया कि स्टेम सेल डोनेट करने से भी कुछ नहीं होता, सो ब्लड डोनेट करने से भी कुछ नुकसान नहीं होता. तो जब भी इमरजेंसी में इन बच्चों को ब्लड की ज़रूरत पड़े तो आगे दे शुड कम फॉरवर्ड एंड डोनेट ब्लड, या ब्लड बैंक में जाके ब्लड देना चाहिए. उसके बाद लोकल चैरिटी ग्रुप्स या पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स ऐसा फॉर्म करना चाहिए उनको, जिसमें कि वो चैरिटी कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ फिनेंशियल हेल्प ही इम्पॉर्टेंट है, इमोशनल हेल्प इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एज आई टोल्ड कि जब किसी बच्चे का कैंसर डायग्नोस होता है तो फैमिली पूरी तरह से दे गेट इमोशनली ओवरवेल्म्ड, वो बहुत सफ़र करते हैं इमोशनली भी. तो उनको ये सपोर्ट देना कि वी आर विथ यू, यू आर नॉट अलोन. जैसे कि सपोज वी हैव सो मेनी चिल्ड्रेन हु आर ऑर्फन्स, और मदर अकेले मैनेज, सिंगल पेरेंट. तो उस केस में उनको सपोर्ट देना, क्योंकि उस टाइम पे बहुत हेल्प की ज़रूरत होती है. कोई जाके, कोई बार बार ब्लड बैंक जा रहा है या ब्लड इन्वेस्टिगेशंस के लिए. सो उस तरह से होलिस्टिक इमोशनल सपोर्ट देना. हमने अभी अवेयरनेस की बात की पिछले आधे घंटे में, तो ये सटल साइंस एंड सिम्टम्स जिसकी हमने बात की, वो अवेयरनेस फैलाना. अगर आपके आसपास कोई बच्चा है जिसको कुछ ऐसा साइंस एंड सिम्टम्स लग रहा है तो उसे डॉक्टर के पास लेके जाना, इसके बारे में जानकारी देना. सो सोसाइटी कैन रियली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड यू नो If the society is motivated about it, you know, we can form a community for these children where these children are diagnosed early, treated appropriately, supported financially and emotionally, and once they complete the treatment, they are accepted back in the society without any stigma. So that is very important.
1: Correct. इसी के साथ ये जो भी कैंसर चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, इसी के चलते आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे?
0: Okay. So as we all know, you know, children are the most precious resources on our planet, and बच्चों का कैंसर ठीक हो सकता है. It has a very good cure rate. So every child should have a fair chance to be treated डायग्नोस्ड अर्ली एंड ट्रीटेड अप्रोप्रिएटली. एंड उन पेरेंट्स को ऐसा नहीं सोचना है कि वो अकेले हैं अगर उनके बच्चों का कैंसर डायग्नोस होता है. ऑल ऑफ अस आर देयर टू सपोर्ट देम इन एवरी पॉसिबल वे, इन प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट, प्रोवाइडिंग देम ब्लड प्रोडक्ट्स. देयर आर सो मेनी एनजीओज फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट स्कीम्स. सो उनको ये सोच के कभी भी ट्रीटमेंट छोड़ना नहीं है कि नहीं हो पाएगा. दे शुड नॉट लूज होप्स, दे शुड बी मोटिवेटेड. इफ दे आर मोटिवेटेड वील मेक श्योर दैट दे कम्प्लीट ट्रीटमेंट. एंड हमारे कंट्री में द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज ट्रीटमेंट अबैंडनमेंट रेट इज वेरी हाई ड्यू टू मल्टीपल कॉजेज. वन कॉज इज लैक ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि कैंसर ठीक नहीं हो सकता, वी आर जस्ट वेस्टिंग आर मनी. तो ऐसा नहीं है, अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है तो उसको कंप्लीट करना है. अबैंडनमेंट रेट इज एज हाई एज 20-30%, विच इज वेरी हाई, तो उसको कम करना है. कुछ पेरेंट्स थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेने के बाद दे गो फॉर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लाइक आयुर्वेदिक एंड वेरियस अदर मोडालिटीज. तो आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर कि एज फार एज कैंसर ट्रीटमेंट इज कंसर्न, हाँ उन सब मोडालिटीज से उनको थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल सकता है, बट दे कैन बी क्योर्ड ओनली विद प्रॉपर मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट विच आई मेंशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन. सो प्लीज डोंट गो फॉर एनी ऑल्टरनेटिव थेरेपी इन द मिडल. डोंट अबैंडन द ट्रीटमेंट, कंप्लीट द ट्रीटमेंट. ऑल ऑफ अस आर देयर टू हेल्प यू, सपोर्ट यू. देयर इज लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर चाइल्डहुड कैंसर, बी इट द सेंटर इटसेल्फ, be it government support, NGO support and society support.
1: Thank you so much. ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो आप केली वेणुधोनी 90.4 FM पे सुन रहे थे. डॉक्टर अभिलाषा हमारे साथ थी जो केली संपत कुमार शिवनगी कैंसर हॉस्पिटल में हेडिंग द डिवीजन ऑफ पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी है और केली जैन मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी. कैसा था आज का एपिसोड जरूर बताएगा. नंबर है 9019904904. ये है केली वेणुधोनी 90.4 FM की प्रस्तुति. नमस्कार.

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, पर तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

मधुबनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है यादों के बारात। हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणुधुनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

यूनिथोनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

गाते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ट्वेंटी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे।

बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 की LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारा हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

रेणुधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धोनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।
1: या

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में, जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।